सुप्रभात, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरित मानस।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के भी दरवाजे खोल देती है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

राहुल जोशी के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगली रचना मैथिली ठाकुर के स्वर में।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए सुनते हैं अगली रचना लता मंगेशकर के स्वर में।

शंकर महादेवन के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन अब समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 6:45 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये पहला गीत 16 साल फिल्म से हेमंत कुमार के स्वर में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, गुलशन बावरा के बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म का नाम सट्टा बाजार।

ताजमहल, ये फिल्म का नाम। वो लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, धुन से सजाया रोशन ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

खोप के इंद्र चढ़ो बुज ऊपर रोप करत सब हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चनैया जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

कुछ बातें कुछ गीत, ये है प्रोग्राम का नाम। और कुछ बातें कुछ गीत में जब भी गीतों की बात आती है तो हम ज़्यादातर गीत जो आजकल सुनते हैं या पसंद करते हैं या जिनसे हमारा परिचय है, वो सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा माना जाता है तो फिल्म संगीत है। और फिल्म संगीत की बात करें तो फिल्म उसमें पहला भाग है। तो हम फिल्मों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कुछ एक्टर्स को जानते हैं, कुछ गायक कलाकारों को जानते हैं, पर क्या हमें पता है कि फिल्म निर्माण एक अच्छी खासी लंबी प्रक्रिया है जिसे कुल चार मुख्य स्तंभों में विभाजित किया जाता है और उसको महत्वपूर्ण अगर उसके चरण हैं तो वो चार है, उनको एलैबोरेट करते हुए 12 तरीकों से हम उसे देख सकते हैं। तो आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात करेंगे फिल्म निर्माण की, जी हाँ फिल्म मेकिंग की। तो बहुत सारे और तरीके होते हैं जिसमें फिल्म बनती है, कुछ हमने भी देखा है, कोई शूटिंग आपने देखी होगी, कुछ सुना होगा जिसमें म्यूज़िक, डायरेक्शन, एक्शन ये सब हम देखते हैं, लाइटिंग का रोल है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं जो मिलकर एक फिल्म बनाती है। पर सबसे पहले फिल्म में अगर कुछ देखा जाता है तो वो क्या है, वो एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर फिल्म बनाने का सबसे पहले ख्याल आता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अलग अलग चरण हैं जिनसे फिल्में बनती हैं, पर आज के शो में हम बात करेंगे फिल्म मेकिंग पर अगला गीत उससे पहले।

0: कही आपसे कि कुछ अलग अलग चरण होते हैं या कोई स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें सबसे पहली बात आती है विचार। जो आइडिया वो किसी से भी लिया जा सकता है, एक सरल अवधारणा सी हो सकती है, कोई सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है, किसी किताब से प्रेरित हो सकती है और या फिर सिर्फ मौलिक कल्पना भी हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है और उसी के आधार पर उसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन से जॉनर की फिल्म है, ये थ्रिलर है, ये एक्शन है, ये कॉमेडी है, ये रोमांटिक है, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चरण हैं, पर हम इतनी सारी जटिल प्रक्रियाओं को किस तरह से देख पाते हैं? हम अपनी तरफ से देखते हैं कुछ जाने माने चेहरे, हमें जो पसंद हैं अभिनेता अभिनेत्रियों को देखकर हम पसंद करते हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत उसमें भरपूर रूप से शामिल होती है। और अब जिस तरह से ज़माना बदल गया है, बहुत सारे लोग सामने या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम उनको जान पाते हैं, देख पाते हैं। अदरवाइज पहले ऐसा बहुत मुश्किल था कि बहुत रेयर ही ऐसे कोई लोग थे जिनके नाम नाम तो फिर भी हम लोग जानते थे, चेहरे बहुत अनदेखे या अनजाने ही रह जाते थे। तो ऐसी बातें और भी करते रहेंगे, कुछ बातें कुछ गीत में, पर पहले ये गीत।
1: मैंने

फिल्म मेकिंग की बात में हम कह रहे थे आपसे कि अगर कोई कहानी है या किसी सच्ची घटना से प्रेरित है तो हो सकता है इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है पहले जिससे हमें जानना है या हम चाहते हैं कि ऑडियंस को पता होना चाहिए। तो ऐसी भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं जिसे आप भी जानते हैं, कुछ हमारी आज़ादी की लड़ाई के बारे में, जो शहजादे हुए थे जिन्होंने अपने आप को सच में तिरंगे की शान में अपने आप को कुर्बान कर दिया था, उन पर बहुत सारी फिल्में हमने देखी। ऐसी कई तरह की फिल्में, एक और उसमें एस्पेक्ट है बायोपिक, जिसे हम कहते हैं किसी के जीवन पर आधारित, जीवनी पर आधारित ये फिल्में, वो बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हमारे फिल्म जगत में है, जैसे कि कोई विशेष खेल से जुड़ी प्रतिभाएं उन पर आधारित वो फिल्म है, किसी के जीवन पर आधारित ऐसी फिल्म जो हमें प्रेरणा दे सकती है, जिसमें कोई सबक या कहानी हो, ऐसी कई तरह की फिल्में हमारे हिंदी सिनेमा और कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऐसी फिल्में बनी हैं। और सब में जो भी फिल्में बनती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण और भी ये कह सकते हैं कि क्रम जुड़े हैं, जैसे उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो जो कहानी हमें मिलती है उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जो कथा कहानी हमें मिल गई है पर उसके बाद उसकी पटकथा लेखन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हम कहानी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सच्ची घटना से प्रेरित है या उस पर आधारित है, पर एक फिल्म बनाने के लिए यूं कि त्यों एक सच्ची घटना को नहीं उतारा जाता है, उसके लिए उसकी पटकथा लिखी जाती है। और ये कहेंगे 90% तक ऐसी ही चीज़ें होती है जो सत्य में घटित हुई है, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी है, कोई सीन ऐसे डेवलप किए जाते हैं या यूं कहे कि डायलॉग्स जो बोले जाते हैं वो भी लिखे जाते हैं। फिल्म मेकिंग में एक और जटिल प्रोसेस ये भी है, डायलॉग राइटिंग। जी हाँ, डायलॉग डिलीवरी तो हम देखते हैं कि एक्टर ने वो डायलॉग बोला, हम बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है कि जिसने वो लिखा है। कई बार ऐसे नाम हमारे जहन में आते ही नहीं या हम उनसे अनजाने रह जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप फिल्म देखें तो उन सब लोगों के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि जो जटिल प्रक्रिया पूरी तरह से हुई है उसके बाद जो हम सामने पटल पर देख रहे हैं सिर्फ वही लोग नहीं हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन सब की मेहनत है।

मिल्खा सिंह पर बनी ये फिल्म भाग मिल्खा भाग आपको भी याद होगी। कितना उम्दा प्रदर्शन किया फरहान अख्तर ने इसमें अपने अभिनय से। जी हाँ, बिल्कुल जीवंत हो गए। हमने जितना भी सिर्फ समाचारों में या जनरल नॉलेज में पढ़ा मिल्खा सिंह के बारे में, उसके बाद पर ये फिल्म देखने के बाद हम बहुत करीब से जानते हैं उनके। ऐसी ही कुछ और भी फिल्में बनी, ऐसी ये कह सकते हैं कि फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि स्पोर्ट्स से भी रही हैं, जैसे MS धोनी और कई सारी, मैरी कॉम, कई सारी ऐसी फिल्में हैं। कुछ गीतों के गीतांश हम आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही फिल्मों से। और तो और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हमारे इतिहास में, उन पर भी जो फिल्में बनी हैं उनके भी गीतांश आपके लिए। कुछ बातें कुछ गीत में।

ऐसे ही अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मैरी कॉम से। बहुत सारे अनछुए पहलू हैं ऐसी प्रतिभाओं के जो हमें, अगर ये फिल्में नहीं बन पाती तो हम देख ही नहीं पाते। हम और भी बात करेंगे फिल्म मेकिंग के स्टेप्स की, पर पहले कुछ ये छोटे छोटे से गीतांश।

in deep trouble now, having lost two matches in a row.

हिंदी फिल्म जगत में ऐसे कई सारे उदाहरण मौजूद हैं जो बहुत अलग अलग विषयों पर बनी हैं। फिल्में जो कभी किसी बायोपिक पर, किसी इंसिडेंट पर, किसी सच्ची घटना जिसे कह सकते हैं उससे आधारित बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, नाम गिनते रह सकते हैं, और कई सारे ऐसे गीत हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। फिल्म निर्माण की बात अगर हम करें तो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत प्रारंभिक अवधारणा से लेकर अंतिम स्क्रीन रिलीज तक एक फिल्म का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे मुख्य चरणों में विभाजित है, जैसे योजना, शूटिंग, संपादन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं। जो हमने बात की स्क्रिप्ट राइटिंग की, वो भी उसमें एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ऐसा है कि एक जो आपकी अवधारणा है, जो आपकी एक योजना है, उसको तहबद्ध किया जाता है और एक गद्य रूप में, या ये कह सकते हैं रिटन फॉर्मेट दिया जाता है, जिसे पढ़कर संवादों का एक रूप दिया जा सकता है, जिससे हर एक चरित्र या ये कहें कि जो प्रॉपर कैरेक्टर स्केच है वो एक स्क्रिप्ट से मिलता है कि जो भी मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री होंगे या सहयोगी अभिनेता अभिनेत्री होंगे उनका क्या काम उसमें निर्धारित रहेगा। इन सब के अलावा अगर कुछ और भी उसमें ज़रूरी मुख्यतः भूमिका निभाता है तो वो है बजट बनाना, समय निर्धारण, क्योंकि बिना बजट के एक फिल्म बनाना सच में मुश्किल है। जब तक कि एक तय बजट नहीं हो हम एक फिल्म के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमने बहुत सारी ऐसी फिल्मों के बारे में सुना है जो 100 करोड़ फिल्म का बजट पूरा कर चुकी हो। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जिन्होंने कलेक्शन उनका उतना हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें सुनते हैं, पर जो लागत है वो पहले से तय की जाती है क्योंकि बहुत सारे चरण हैं उनके ऊपर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से खर्च किया जाता है। तो सब कुछ जो योजनाबद्ध चरणबद्ध तरीके से चला जाता है तभी एक सफल फिल्म का निर्माण हो पाता है।

साउंड म्यूजिक इन सब का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फिल्म मेकिंग में. जी हाँ, हम जो भी चीज़ें याद रख पाते हैं किसी फिल्म के बारे में, जैसे डायलॉग की बात की तो बहुत पुराने फिल्मों के डायलॉग हमें आज भी सुनने मिल जाते हैं बड़ों से, या हम भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. तो ये एक सफल डायलॉग राइटर की का काम है, और उसके बाद जिसने डायलॉग डिलीवरी की उस एक्टर के ऊपर भी उसका श्रेय जाता है. उसके बाद और भी बहुत सारे चरण हैं, जैसे एडिटिंग, विजुअल इफ़ेक्ट्स. आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी है, विजुअल इफ़ेक्ट्स जैसी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती, पर अब बहुत आराम से हम देख पाते हैं इन सब चीज़ों को. और एडिटिंग की बात करूँ तो जिस तरह से उसको कट करना है, बेस्ट टेक्स को सीक्वेंस में लेना है, ये सब चीज़ें इतनी सरल नहीं है. हमने शूटिंग देखी और सुनी है, पर जो शूट हुआ उसके बाद कौन सा टेक है जिसे सही तरीके से लिया गया या जिसे चयन किया जाए और वो सफल होगा स्क्रीन पर, ये सब कुछ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो ऐसे बहुत सारे चरणों के बाद जो फिल्म हमारे सामने आती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, ये सारी भी चीज़ें हैं. कौन से थिएटर्स में जाएगी, कहाँ पे ये स्ट्रीम, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करनी चाहिए, टेलीविज़न नेटवर्क्स पे कहाँ ये डाली जाएगी, ऐसी बहुत सारे चरणों के साथ फिल्में बनती है. और हम जिसे बात कर रहे थे, कई बड़े बजट की फिल्में भी हमारे सामने आई, और उसमें जो सेट बनते हैं उन सेट की भव्यता के बारे में भी बात होती है. म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत फेमस होते हैं, इवन कोरियोग्राफर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर स्टेप्स हैं कई सारी फिल्मों में और गानों में जिन्हें याद किया जाता है.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: 10 किलो हर्ट्स पर 8 बजने को चार।
2: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
7: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था।

0: पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में

लोग होते हैं उनका संघर्ष, उनकी सच्चाई उनकी आंखों में देख सकते हैं। तो आंखें वो आईना है जो हर किसी को उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच सच बता देती हैं।

0: कभी कभी आंखें भी आंखों से बात करती हैं, तपती धूप में हवा का झोंका राहत दे जाता है, दुख में किसी का हाथ जब साथ आता है तो उम्मीद का साथ मिल जाता है, तो फिर कभी किसी की नज़र जीने का सहारा बन जाती है, किसी की आंख में देखकर हमें उम्मीद सी नज़र आती है, और ये आंखें हैं ना सपने भी दिखाती हैं और सपनों के लिए हमें संघर्ष के लिए जगाती भी हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो सपने हैं ये हमारे भविष्य का आईना है। हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सपने देखता है। ये सपने हमें मेहनत और संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं, और जो संघर्ष करने वाले

0: जिंदगी में कई हालात ऐसे आते हैं जब वो ही वो नजर आता है। कभी अपना कोई नजर आता है, तो कभी कोई कहता है कि रब नजर नहीं आता, तो उससे हम पूछते हैं कि कौन कहता है कि रब नजर नहीं आता, जब कुछ भी नजर नहीं आता तो रब ही नजर आता है। वैसे एक बात है कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, जब अपनों का साथ होता है, अपने नज़र आते हैं सामने, तो फिर वो नज़ारा बहुत हसीन होता है। और ज़िंदगी को खुला छोड़ देना चाहिए जीने के लिए। बहुत ज़्यादा संभाल कर रखी हुई चीज़ें वक्त पर मिलती नहीं हैं।
1: बिल्कुल, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कठिनाइयां आए, लेकिन जो एक पल प्यार का, मोहब्बत का और स्नेह का, आत्मीयता का अगर हमें किसी से मिल जाता है, तो फिर जिंदगी में वो दुख, दर्द, कठिनाइयां बिल्कुल भी हमें आभास नहीं होती हैं, और जिंदगी को हम उस एक पल के सहारे दूर, कहीं दूर लिए चलते हैं।
0: और
1: हमारे
0: देखिए, ऐसा भी है ना कि कभी किसी दिन ऐसा हुआ है कि स्याह रात के बाद उजला सवेरा ना हुआ हो, या फिर रात ने कोई साजिश की हो और फिर एक सुबह ना हुई हो। ऐसा तो कभी नहीं होता। तो बस हर संघर्ष की रात के बाद एक नया दिन होता है, और ज़िंदगी बस इसी तरह से बसर होती है।

0: दोस्तों, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे दिलों में उतर जाते हैं, जैसे कि आई लव यू, सॉरी, प्लीज, कैसे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जब ये शब्द हमारे दिल में उतरते हैं तो बहुत गहरी जगह बनाते हैं। जब एक माँ अपने बेटे से बोलती है, बेटा मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू बेटा, या बेटा उत्तर में माँ को फिर से ये कहता है कि माँ आई लव यू टू, ये इतने आत्मीय शब्द हैं, इनकी जगह कोई और दूसरा शब्द जगह कभी ले ही नहीं सकता।
1: जी, बहुत सारे शब्दों से मिलकर हमारा शब्द कोश बनता है जिंदगी का, लेकिन आजकल एक शब्द हमारी जिंदगी से धीरे धीरे मिसिंग होता जा रहा है। वो शब्द है राहत। हम ढूंढ रहे हैं उस शब्द को, न जाने कहाँ खो गया है थकन में। और जावेद कमर बड़ा अच्छी अपना इस मामले में अपना जिक्र वो रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि दिल का सुकून ढूंढते जाएं बशर कहाँ, ऐसा मगर है कौन सा दर कहाँ। तो सुकून
0: बिल्कुल
1: भरी जिंदगी जीने की चाह तो हर किसी को होती है, कभी कभी सुकून बजता हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है।

0: दोस्तों 9 बजने वाले हैं, यहाँ पर हम रुकेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए। 9:10 पर नमस्कार, मैं फिर से हाजिर होंगी।
1: यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1,200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री कई नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। वे सबसे पहले जोधपुर पहुंचेंगे, जहां उनका विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन का कार्यक्रम है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसलमेर में 67 करोड़ रुपए की लागत से नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। जोधपुर से रेल मंत्री जालौर जाएंगे, जहां वे भुज नई दिल्ली रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन राज्य भर के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत से जिले में खुशी का माहौल है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
1: जालौर जिले को दिल्ली से सीधा रेलवे सेवा जोड़ने का अब सपना साकार हो रहा है। जिले के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ये गाड़ी प्रतिदिन जालौर जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में इसका ठहराव रहेगा। जिले वासियों के लिए सीधा मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर और दिल्ली के लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं गुजरात की ओर जाने वाले लोगों के लिए धानेरा, भीलड़ी, भरूच, गांधीधाम, अंजार के लिए यात्री गाड़ी शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। कप्तान कनकलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर।
0: रेल मंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पाली भी जाएंगे। श्री वैष्णव कल जयपुर में रोजगार मेले में भाग लेंगे, जहां वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 5 देशों के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने यह बैठक की। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के मद्देनजर और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की दृष्टि से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य में सुधार करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता को देशवासियों का सामूहिक दायित्व बताया है। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जन जन का आंदोलन है। श्री शर्मा कल डूंगरपुर में स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर ने स्वच्छता को जन सहभागिता का उत्सव बनाया है। इसकी वजह से आज सब जगह डूंगरपुर मॉडल की चर्चा होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक राज्य में 3 लाख के करीब व्यक्तिगत शौचालय और 5,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। वहीं 41,000 से ज्यादा ODF प्लस मॉडल विलेज बने हैं और 21 जिलों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने आज दंभोला गांव में पैदल भ्रमण कर लोगों से संवाद भी किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। इससे लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का नया आदर्श दुनिया के सामने पेश किया गया है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 5 सरहदी जिलों में 1,200 से अधिक गांवों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने सालाना

0: 150 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। इसके तहत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलौदी में रणनीतिक महत्व के 184 गांवों में विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं सहित कई विषयों की मौके पर ही समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा। श्री बिरला ने शहर के सुनियोजित, सुरक्षित और सुविधाजनक विकास पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों के महत्व और पर्यावरण संतुलन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना रखी गई है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जैव विविधता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण शपथ और पौधरोपण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: जैविक क्षेत्र गांवों और पहाड़ों के बीच तेंदुओं की मौजूदगी जैव विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जैव विविधता संरक्षण का महत्व बताया जाएगा। पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण, शपथ एवं संगोष्ठी आयोजित कर प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वहीं अधिक से अधिक पौधरोपण, जल संरक्षण करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की जाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके असर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर आज और कल रहने के आसार हैं। इससे दोपहर बाद कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इस बीच 46.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कल श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिन के समय जहां तपती धूप लोगों को झुलसा रही है, वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं।
3: सूरज की पहली किरण के साथ ही गर्मी अपना एहसास करवा देती है। इसका असर देर रात तक बना रहता है। लगातार भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय बाजार भी वीरान नजर आने लगे हैं। तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से दमकल की सहायता से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। इधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलने की एडवाइजरी जारी की है। शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: अधिकतर शहरों में कल दिन का पारा 40 से 44 डिग्री के बीच रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और इस अंक के साथ में आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
5: हेमलता।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले डालते हैं एक नज़र क्या है आज का दिन इतिहास में। पंद्रह में भारत में सूर्यवंश के सुल्तान शेरशाह सूरी की बुंदेलखंड के कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान विस्फोट होने और आग लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने पर निधन हुआ था आज ही के दिन।

0: 1936 में आज ही के दिन लॉर्ड ब्रैबॉर्न ने बम्बई में ब्रैबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी। यह देश का पहला स्टेडियम था और इसका उद्घाटन 7 दिसंबर 1937 को हुआ था। 1974 में वानखेड़े स्टेडियम के निर्माण से पहले यह मुंबई का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्थल हुआ करता था।
1: श्रोता, 1990 में उत्तरी और दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का उदय हुआ था आज के दिन।
0: 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी के सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी आज ही के दिन।
1: सन 1906 में राइट बंधुओं ने अपनी फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिका से पेटेंट पाया था आज के दिन।
0: 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्होंने ये चढ़ाई सफलतापूर्वक आज ही के दिन पूरी की थी।
1: सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी आज के दिन।
0: में गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नार्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था आज ही के दिन।
1: श्रोता, 1989 में भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल पूर्वक परीक्षण किया था आज के दिन। इस मिसाइल की लंबाई तकरीबन 15 मीटर है और प्रक्षेपण भार 12,000 किलोग्राम था और मारक क्षमता 700 किलोमीटर थी।
0: मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति निर्मला सहित हिंदी की 5 रचनाओं के अनुवादक को वर्ष 2007 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया था आज ही के दिन।
1: और सन 1992 में बोस्निया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे आज के दिन।

0: दोस्तों, आज है 22 मई। आज के दिन को विशेष तौर पर मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, पशु, सूक्ष्म जीव की विविधता। इसमें उनके जीन, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता शामिल होती है। यह प्रकृति का सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने और मानव जीवन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन जैव विविधता की रक्षा और मानव कल्याण को बनाए रखने वाले पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की आवश्यकता की वैश्विक याद दिलाता है।
1: जी हाँ, और याद दिलाता है इसकी परिभाषा की भी। 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा है धरातलीय, महासागरीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित या उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है। श्रोताओं, जीवन में जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता से समृद्ध हो और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी वो अवसर प्रदान कर सके। जैव विविधता में कमी होने से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कहीं बाढ़ होती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है, और इसके लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों विशिष्ट जैविक और कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है। हमारे साथ पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार के जीव जंतु हैं, ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, ये सागर, ये पठार, ये नदियाँ, ये समुद्र, सभी तो प्रकृति की देन है। हमें इसका संरक्षण करना होगा, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व और विकास के साथ काम करती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इस दिन का समन्वय जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जैविक विविधता पर सम्मेलन द्वारा किया गया था, और 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। ये तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। यह जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों के न्याय संगत बंटवारे के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत इस संधि का एक पक्षकार है। भारत ने इस संधि के तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया है। यह देश में जैव विविधता के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, और 2026 का जो आज के दिन का विषय रखा गया है वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना।
1: श्रोताओं, विश्व के सबसे ज्यादा जैव विविधता से समृद्ध 17 देशों में भारत भी सम्मिलित है, जिनमें विश्व की लगभग 70% जैव विविधता विद्यमान है। दूसरे जो 16 देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कांगो, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया

पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, अमेरिका और वेनेजुएला है। संपूर्ण विश्व का केवल 2.4% भाग ही भारत में है, लेकिन यहाँ विश्व के ज्ञात जीव जंतुओं का लगभग 5% भाग निवास करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में लगभग 49,000 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं और 89,000 प्राणी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारे देश में जो वनस्पति विविधता है उसका आधार पर अगर हम देखें तो विश्व में हम 10वें स्थान पर हैं और क्षेत्र सीमित प्रजातियों के आधार पर हम 11वें स्थान पर हैं और फसल के उद्भव और विविधता के आधार पर हमारा स्थान 6ठे स्थान पर है।

0: दोपहर की तपती धूप, सड़क पर भागती जिंदगी और चौराहों पर टिमटिमाती पीली बत्तियां। आजकल गर्मियों में शहरों का यही दृश्य आम हो गया है दोस्तों। कई जगहों पर भीषण गर्मी और बिजली बचत के कारण दिन में ट्रैफिक सिग्नलों को फ्लैश मोड पर रखा जाता है, जहां केवल येलो लाइट लगातार जलती बुझती रहती है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों की समझ और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही न केवल दुर्घटना का कारण बन सकती है, बल्कि भारी ट्रैफिक चालान भी कटवा सकती है। ट्रैफिक सिग्नल की पीली बत्ती का अर्थ अक्सर लोग गलत समझ बैठते हैं। बहुत से वाहन चालक इसे जल्दी निकल जाओ का संकेत मान लेते हैं, जबकि वास्तव में येलो लाइट सावधानी और धीमी गति का संकेत देती है, यानी कि इसका अर्थ होता है रुकने या आगे बढ़ने से पहले सतर्क हो जाइए। यदि चौराहे पर भीड़ हो, दूसरी दिशा से वाहन आ रहे हों, या कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा हो, तो गति नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन गर्मी में जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन और धूप से बचने की जल्दी कई बार लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। आजकल शहरों में कैमरों और ऑटोमेटिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के कारण चालान पहले की तुलना में अधिक तेजी से कटने लगे हैं। रेड लाइट जंप करना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना या फिर गलत दिशा में गाड़ी ले जाना, ये सभी नियम उल्लंघन सीधे ऑनलाइन चालान में बदल जाते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता और कुछ दिनों बाद मोबाइल पर मैसेज आ जाते हैं कि उनका हजारों रुपए का ई चालान बन चुका है। गर्मी के मौसम में ट्रैफिक पुलिस का काम भी आसान नहीं होता, और ऐसे में हमें ही ध्यान रखना होगा। नागरिक स्वयं नियमों का पालन करे तो व्यवस्था अधिक सुचारू रह सकती है। पीली बत्ती वाले चौराहे पर विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि वहां सिग्नल नियंत्रण सीमित होता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी हाँ, हम जब पीली बत्ती देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम पहले निकल जाएं। हो सकता है सामने वाले रास्ते से आने वाला व्यक्ति भी वही सोच रहा हो, और ऐसे में होता यह है कि सभी अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर हमें बहुत ही सामान्य तरीके से, सामान्य गति से निकलना होता है, वहाँ पर हम बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि येलो लाइट आपसे बहुत कुछ कहती है। साथ ही आपने चालान की बात की और बड़ी काम की बात कर रहे हैं श्रोताओं। हम इन दिनों अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं कि सड़क के किनारे एक सफेद पट्टी बनी होती है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि ये सड़क का किनारा दर्शाने के लिए बनी है। जी हाँ, कुछ हद तक ये भी सही है कि ये सड़क का किनारा होती है, और अगर आप जोधपुर शहर में रहते हैं और सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, जिसके दो टायर इस सफ़ेद पट्टी के दाईं तरफ अगर हुए, तो आपका चालान कट सकता है। इसलिए मेहरबानी करके जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करें, तो आपके चार पहिए गाड़ी की चारों पहिए जो हैं वो सफ़ेद पट्टी के बाईं तरफ होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और जब भी आप शहर में जाते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप नई सड़क और घंटाघर वाले क्षेत्र पर जाते हैं, तो जहाँ भी नो पार्किंग लिखा है, अगर आपने अपनी गाड़ी को वहाँ रोक दिया है या गाड़ी को पार्क किया है, तो फिर आप चालान के लिए तैयार हो जाइएगा। काम की बात है, इतनी आसानी से भूलिएगा नहीं। जब भी गाड़ी पार्क करें, जो उसका स्थान है वहाँ करें, या सड़क से थोड़ी दूर साइड में हटाकर अपनी गाड़ी को पार्क करें, और आप अपने यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखिए और अपने सफ़र को भी आसान बनाए रखने के लिए अपनी भागीदारी ज़रूर दें।

0: श्रोताओं, इस समय आप हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार सुन रहे हैं और बहुत सारी बातों में एक खास बात ये कि राजस्थान के राज्य पक्षी और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गोडावन द इंडियन ग्रेट बस्टर्ड के संरक्षण के इतिहास में कल का दिन खास रहा, एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। प्रदेश में पहली बार आधिकारिक तौर पर गोडावन दिवस मनाया गया।
1: इस अवसर पर जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गोडावन की विशेष प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में सभी अधिकारी और प्रशासनिक लोग जुड़े हुए थे और इसके साथ ही वर्तमान में जैसलमेर के जंगलों में 130 गोडावनों की संख्या हो गई है और 87 गोडावन जो हैं वो ब्रीडिंग सेंटर में अभी मौजूद हैं। इस प्रकार गोडावनों की अगर कुल संख्या की हम बात करें तो वो बढ़कर 217 तक पहुंच गई है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें, गोडावन को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था और देश का पहला गोडावन प्रजनन केंद्र जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। और श्रोताओं, गोडावन को विलुप्त होने से बचाने के लिए पूरी गंभीरता से काम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इनके प्राकृतिक आवास को और सुरक्षित करने, अंडों की सुरक्षा बढ़ाने और ब्रीडिंग सेंटर की क्षमता मजबूत

मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे ताकि मरुभूमि की इस अनमोल धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन दिवस की हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये हमने 21 मई को मनाया था और आगे आने वाले समय में भी हम इसके उद्देश्य को याद रखें और प्रकृति संरक्षण की ओर सह अस्तित्व के उत्सव में अपनी भी भागीदारी दें और संकल्प लें, साथ ही अपनी जिम्मेदारी को निभाने की भी कोशिश करें।

के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष सेगमेंट शुक्रवार की किताब, और आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व साहित्य की उस रहस्यमयी और सिहरन पैदा कर देने वाली कृति की जिसने गौथिक साहित्य को एक नई पहचान दी, एडगर एलन पो की प्रसिद्ध कहानी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। यह कहानी केवल एक पुराने महल के ढहने की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर पल रहे भय, अकेलेपन, मानसिक विघटन और रहस्य के अंधेरे

0: संसार की यात्रा है। 1839 में प्रकाशित यह कहानी गॉथिक हॉरर साहित्य की सबसे प्रभावशाली रचनाओं में गिनी जाती है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उन पाठकों के लिए एक बेहतरीन रचना है जो डरावनी, मनोवैज्ञानिक और धीमी गति वाली हॉरर कहानियों में रुचि रखते हैं। पो की लेखनी इतनी गहरी और प्रभावशाली है कि पाठकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है और एक अजीब सा रहस्यमय डर पैदा करती है। ये कहानी कई साहित्यिक मंचों पर गॉथिक फिक्शन के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रशंसित है। एडगर एलन पो की लघु कहानी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर शुरू होती है एक सुनसान, उदास और रहस्यमय हवेली से, हाउस ऑफ

0: और रहस्यमय हवेली से, हाउस ऑफ अशर।
1: कहानी का मुख्य पात्र अपने पुराने मित्र रॉड्रिक अशर के बुलावे पर उसके विशाल लेकिन भयावह महल में पहुंचता है। वहां का वातावरण, टूटती दीवारें, सन्नाटा, उदासी और रहस्यमयी घटनाएं, पाठक और श्रोता दोनों के मन में एक अनजाना भय पैदा करती हैं। और धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि यह महल केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि अशर परिवार की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का प्रतीक है।
0: रोड्रिक एक ऐसा शख्स है जो डर, वहम और मानसिक बेचैनी का कैदी बन चुका है। उसकी बहन मेडलिन भी एक अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रही है। श्रोताओं, इस कहानी के असल किरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो हवेली भी है जिसकी दीवारें, गलियारे और सन्नाटा डर की जुबां बोलते हैं।
1: एडगर एलन पो ने इस कहानी में वातावरण को ही एक पात्र बना दिया है। अंधेरा, तूफान, खामोशी और टूटन सब मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं कि श्रोता स्वयं उस महल के भीतर प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी हॉरर और मनोवैज्ञानिक साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में शामिल है।

0: एडगर की लेखनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे डर को दिखाते नहीं, महसूस करवाते हैं। इस कहानी में कोई चीखता हुआ राक्षस नहीं है, कोई हत्या का सस्पेंस नहीं है, फिर भी हर पन्ना पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे अंधेरा धीरे धीरे आपके करीब आ रहा हो। ये इंसानी दिमाग के टूटने, अकेलेपन और पारिवारिक बिखराव, रिश्तों के क्षय की भी एक दास्तान है। हाउस ऑफ अशर असल में उस परिवार की हालत का आईना बन जाता है जो बाहर से खड़ा दिखाई देता है पर अंदर से बिखर चुका है।
1: बिल्कुल, इस कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्रतीकवाद है, हाउस ऑफ अशर। केवल एक घर, महल, भवन नहीं, बल्कि एक परिवार, उसकी विरासत और उसके पतन का प्रतीक है। कहानी ये भी बताती है कि जब मन भय और अकेलेपन से भर जाता है, तब वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। कहानी का अंतिम दृश्य साहित्य के इतिहास के सबसे यादगार और भयावह अंतों में गिना जाता है, जहां महल का पतन मानो पूरे अशर वंश के अंत की घोषणा बन जाता है।
0: इस किताब की सबसे दिलचस्प बात इसका वातावरण है। श्रोताओं, हर शब्द में धुंध है, हर दृश्य में वीरानी और हर खामोशी में कोई अनकहा डर छिपा आप महसूस करेंगे। डरावने दृश्यों और भावुकता में डूबे बगैर खौफ के चरम पर भी आप पहुंचते हैं। इसमें अपराध बोध आपको महसूस होगा। कुछ समय के लिए हम फ्लैशबैक में भी जाते हैं, जब अशर का परिवार दुनिया के शिखर पर था, रौनक से गुलजार था। हम दर्दनाक पतन को भी देखते हैं, रॉड्रिक के कष्टमय जीवन को भी महसूस करते हैं, रूढ़िवादी बीमार माँ पिता के रूप में भोगवादी प्रवृत्ति और किस तरह से नशीले पदार्थ जिंदगी को बदल देते हैं, और फिर एक भयानक अंत, परिवार के सदस्यों की मृत्यु का क्रम और बहुत सारे सवाल पाठक के मन में। वैसे श्रोताओं, कुछ कहानियां खत्म होकर भी असल में खत्म नहीं होती, उन किरदारों का साया देर तक दिमाग में रहता है। ये भी ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी दास्तान जो हमें बताती है कि कभी कभी सबसे डरावनी आवाज हमारे अपने भीतर की खामोशी होती है।
1: तो श्रोताओं, यदि आप रहस्य, मनोविज्ञान और गहरे प्रतीकों से भरा साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, तो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर अवश्य पढ़िए। यह केवल डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अंधेरों की साहित्यिक पड़ताल है। इसी के साथ आज की पुस्तक चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नए विचार और नई साहित्यिक यात्रा के साथ।

दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में आइए अब बात कर लेते हैं आज जिन खास लोगों का जन्म हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं उनकी जन्म जयंती पर। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक और भारतीय नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1772 को बंगाल के राधानगर गाँव में हुआ। एक महान समाज सुधारक के अलावा धार्मिक चिंतक, शिक्षाविद और पत्रकार थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता का विरोध किया। सती प्रथा को समाप्त करवाने में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उनके निरंतर प्रयासों के कारण 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा पर कर्म कांडों के विरोधी थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज और धर्म में सुधार लाना था। वे आधुनिक शिक्षा के कठोर समर्थक थे और अंग्रेजी, विज्ञान और पाश्चात्य शिक्षा को भारत में बढ़ावा देने के पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी बड़ा योगदान दिया। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने संवाद कुमुदी और मीरात उल अखबार जैसे समाचार पत्रों का संचालन किया और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1831 में वे इंग्लैंड गए, जहां 27 सितंबर 1800

0: प्रीति स्कून का निधन हो गया। उनके विचारों और कार्यों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी, इसलिए उन्हें आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है।
1: श्रोताओं, यादों की कड़ी में आज हम याद कर रहे हैं गामा पहलवान को। हमने कल भी उन्हें याद किया था। ये भी एक संयोग रहा कि 21 मई 1960 को वे इस फानी दुनिया से अलविदा हुए और अगले ही दिन 22 मई को लोगों ने उन्हें उनके जयंती के अवसर पर एक बार फिर याद किया और आज है 22 मई, हम उन्हें याद कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तमे जमा पहलवान का नाम ना सुना हो। गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं। शारीरिक ताकत के लिए जिस तरह से दारा सिंह जी की मिसाल दी जाती है, उसी तरह एक समय पहले गामा पहलवान का नाम लिया जाता था। 15 अक्टूबर 1910 में गामा पहलवान को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के विजेता के रूप में घोषित किया था और अपने पहलवानी के दौर में गामा जी की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय थीं कि साधारण लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि गामा पहलवान वास्तव में हुए भी थे। 19 साल के गामा ने तत्कालीन विजेता पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चुनौती दे डाली थी। भारत में हुई कुश्तियों में ये कुश्ती ऐतिहासिक कुश्ती के रूप में जानी जाती है, जो घंटों तक चली थी और अंत में बराबर पर छूटी थी। रहीम बख्श से अंतिम कुश्ती जीतकर रुस्तमे हिंद का खिताब गामा पहलवान ने जीता था। श्रोताओं, आज भी पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में उनके कसरत करने का उपकरण रखा हुआ है। ये एक पत्थर का गोल चक्का है जिसको गले में पहनकर गामा पहलवान बैठक लगाया करते थे। इस गोल चक्के का वजन तकरीबन 95 किलो है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, इस तरह से अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं।

0: कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण को, जिनकी के आज पुण्य तिथि है। जिनका असली नाम विजय पाटिल था। वे राजश्री प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्मों मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं के मधुर संगीत के लिए विशेष रूप से याद किए जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत में वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में लक्ष्मण के नाम से जाने जाते थे, लेकिन साथ ही संगीतकार राम सुरेंद्र के निधन के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ ही राम जोड़ लिया और राम लक्ष्मण बन गए। 16 सितंबर 1942 को जन्मे राम लक्ष्मण ने अपने पिता और चाचा से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और बाद में भातखंडे शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया। अपने 4 दशक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी की 150 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

अभी आपने सुना नमस्कार कार्यक्रम। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुने लोक संगीत। लोक संगीत में पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं सरदार खां लंगा पार्टी से।

पारसनाथ पार्टी के स्वर में ये लोक रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम।
1: विज्ञान भवन चले हैं।

नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।

0: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais, and now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
1: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया. कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत.

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले छह दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए दो वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों

0: एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मॉनसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
4: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
3: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय।

0: लय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
1: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृहमंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगत से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
2: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है।

0: आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
1: रक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है और अब सीमा प्रहरियों का

0: नामकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
1: And now the awards are going to be given to all the people for their gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
2: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव।

सहायक कमांडेंट सातवीं बटालियन 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक, श्री अंकित गोयल, आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय।

गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं
1: एंड नाउ श्री अमित शाह, द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ अ ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई, और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृहमंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है, मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में ये गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौतियां आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि

कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इस चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नारकोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए

बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया है।

वो जमाना चला गया। जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए,

डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिरीड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नार्कोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल

0: एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
3: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में

0: उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्र गीत विच विल बी परफॉर्मड बाय
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का। इसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life. All the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam G. Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू ओबी इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा कमल सिंह हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं नमस्कार
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे
3: श्रोताओं अभी आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है दोपहर के 12:05 हो चुके हैं आइए सुनते हैं लोक संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं शमसुद्दीन की आवाज़ में ये लोक रचना

श्रोताओं, अभी आपने सुना लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम पहली गजल सुनवा रहे हैं आपको पंकज उधास की आवाज़ में।

अभी आपने सुनी पंकज उधास की आवाज़ में ये गज़ल। आइए अगली गज़ल आपको फिर से सुनवाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को हैं। लीजिए अब आप सुनिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। इसके अपग्रेड होने से अब यात्रियों को आसानी होगी। इस मौके पर श्री वैष्णव ने भगत की कोठे स्थित वंदे भारत स्लीपर कोच वर्कशॉप के दूसरे चरण की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। जोधपुर स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि देशभर में रेल संपर्क सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राजस्थान को 10,000 करोड़ से अधिक के बजट आवंटन से आने वाले समय में रेलवे में और भी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा।
2: ओवरऑल पूरे देश भर में कनेक्टिविटी जम के बढ़ रही है। अपने राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का बजट मोदी जी ने दिया है, तो उसके कारण बहुत सारा काम हो रहा है। जोधपुर स्टेशन भी आप देख ही रहे हो, कई नई नई रेलवे लाइनें बन रही है। अपना जैसे मारवाड़ जंक्शन से मावली 40 साल पुरानी डिमांड थी, आज उसका गेज कन्वर्जन चल रहा है। मेड़ता से पुष्कर का काम चालू हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हरिद्वार की जो डिमांड है वो भी मेरे ध्यान में है, और उसके लिए भी मैं कोई ना कोई अलग व्यवस्था करूँगा और बहुत जल्दी वो व्यवस्था भी।
1: श्री वैष्णव शाम को जालौर जाएंगे, जहां से वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। उनका पाली जाने का भी कार्यक्रम है। श्री वैष्णव का ये दौरा राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है। उनका कल जयपुर में रोजगार मेले में शिरकत करने का कार्यक्रम है, जहां वे युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रेल मंत्री जयपुर जंक्शन में किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। राजस्थान में रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है, वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गिनती कर नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत

0: पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए 31 जुलाई तक का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकरण में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई तरह की चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव लगातार बनाए रखा है। उन्होंने अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 63 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइया, खेती बाड़ी रे आपा काम काज करे हां, और साथे साथे किसान भाई री कोशिश रहे कि भाई जिकी भी फसल खेत में ले राखी हां, तो उनरो बहुत ही सरल और सुगमता पूर्वक एड़ो आपा उपचार करदा, निदान करदा। मान लो उन मैंने कोई रोग लाग जा, कोई कीड़ा लाग जा, तो गणकार किसान भाई रे दिमाग में आवे कि भाई मार्केट से जिकी दवाई ले आवाला करला, जिकी कीमत है वह भी ज्यादा बढ़े करे है, लागत जिकी है ज्यादा आया करे। तेरे वास्ते कई किसान भाई कहीं करे कि आप रे खुद ही एड़ी जैविक विधि से जिकी दवाया है वे आप रे बना ले, और जिका जीव उत्पाद है उन्होंने काम में लेवता थका उन फसला रे माते छिड़काव करे, ताकि जिकरा भी भात भातरा जीव रोग लाग जा तो उन रोगों जिको खात्मो है कर सके। आज आपने जानकारी देवा के भाई जैविक विधि से फसला रो जिको संरक्षण है वो आप किन तरह से कर सका। किसान भैया, एक अपने सामी आवे के भाई छाछ रो जिको फवारो है वो भी आप दिया करा। देसी गायरी जी की 10 से 15 दिन पुरानी खाटी छाछ वे आ अपने घरे मिल जा, क्योंकि किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी काम काज करी जे, तो आज की छाछ है 100 से 150 मिलीलीटर ने 15 लीटर पानी मैंने मिला परार एक सार अपने हिलान कर लेनी चाहिए। और इनने अपा किन फसला माते उपयोग में ले सका, चनो और अरहर वठे जी की इलिया है या मोजेक बीमारी ग्रसित जी की फसल है वीर माते आप छिड़काव करा तो कीट रोग से फसल ने लाभ मिलिया करे। दूजो आपा ने सामी आवे के भाई मटका खाद जिनने आपा नीमच गोशाला विधि किया करा, 15 किलोग्राम ताजा गोबर, देसी गाय रो 15 लीटर ताजा गोमूत्र और 15 लीटर पानी मिट्टी रे घड़े महीने आपने बढ़िया इलान गोल लेनो है। उन महीने 250 ग्राम जी को गुड़ है अपने वो मिला देनो, इन गोल ने मिट्टी रे बर्तन में ऊपर कपड़ो या टाट मिट्टी में बढ़िया पैक कर देनो। 4-5 दिन बाद रे महीने इन गोल रे महीने 200 लीटर पानी मिला परा और 1 एकड़ खेत रे महीने समान रूप में आप छिड़काव कर दा, और छिड़काव फसल आप बादा उन 15 दिन बाद में आपने करना चाहिए, और फाचो एक दान 7 दिन भले हो जा उन वक्त आप प्रक्रिया जी की एक दान भले फाची द्वारा दा। सामान्य फसल में आप बात करा 3-4 बार, और लंबी अवधि जी की फसल वे जो गन्नो है, केलो है, हल्दी है, इन महीने ज्यादा छिड़काव करना पड़े। हम जीव रस चूसने वाला कीट वे उन्हें भी अपने रोकथाम करनी बहुत जरूरी हो जा, तो वास्ते आप कई करा के नीम रे बीज रो चूर्ण वो ले सका, और सांद्रण जी को है इनरो 3% या 10% लेवा, 3% लेवा तो साथे प्रति एकड़ जैव उत्पाद जी की मात्रा है 200 लीटर पानी भी अपने लेवनी पड़े, 6 किलो नीम बीज चूर्ण अपने काम में लेवनो पड़े, और 10% अपने बढ़ानो है तो 10 किलो नीम रो जी को बीज चूर्ण है वो अपने काम में लेवनो पड़े। इनके साथ साथ किसान भाई जैव उत्पाद रूप में आप बात करा नीम रो तेल ले लेवे, नीम बीज रो जी को चूर्ण है वो भूमि रे महीने भी आप भुरकादा कर दा, इनके हाथ नीम रीज की पत्तिया रो अर्क है वो आप काम में लेना। इनके साथ साथ कई किसान भाई लहसुन मिट्टी तेल भी छिड़काव करिया करे, और कई दान तो किसान भाई हल्दी पाउडर जिको घोले वो भी फसला रे माते छिड़काव करे, जिनसु जिका रस चूसने वाला जिका कीट है उन जी की रोकथाम है आ हो जाया करे। इन रे हाथ आते किसान भैया आपा जो बात करा के कई खेतर महीने दिमक बहुत ज्यादा हो जाया करे, तो उदय जी ने आपा कहवा इनरो नियंत्रण भी आपने राखनो जरूरी हो जा। मक्का रा जिका भूटा वे उनरा दाना निकाल परार जिको गिंडी बज जा उन महीने 6-7 जी की गिंडी वे उन एक गड़े मैंने अपने राख लेनी चाहिए, उन गड़े ने खेत्र में गड्ढो खोद परो और बार देना चाहिए, और उनको जो को मुंडो है वो जमीन 1 इंच ऊपर अपने राखना चाहिए। गड़े रे मुरे माते सूती कपड़ो आप बांधा, इन तरह आप देखा 10 से 12 दिन महीने गड़े महीने जी की दिमक है आ मर जाया करे।

हमें ए जी का घड़ा है अपने 100 मीटर की दूरी रे माथे खेत महीने अपने गाड़ना चाहिए। बूटे बेजी का दीमक है मैं गढ़ महीने भर जा और बाद महीने ए जी का दीमक है आप इनारो खात्मा जी को आप कर दें और जी की बचोड़ी जी की गिंडी रे साथ दूजा जी का अच्छी गिंडी है फाचा आप भरपरा और इन गढ़े में आप फाचो जमी में भार दा। तो इन्हीं तरह आज की प्रक्रिया चलती रहे हैंग में गढ़ महीने वह उदय जी की बड़ी होती रहे और बाद में एक हाथे बेड़ो आप कंदवाने उदय ने नष्ट कर दिया करा। किसान भाया आ ही जानकारी क्या भाई जैविक विधि सु आप फसलों रो जिको बचाव है सुरक्षा है संरक्षण है और किन तरह सु कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पूरा वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख दिराओ राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कृषक भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी जोधपुर, आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर, सूर्य नगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर एफएम सन सिटी चैनल। दोपहर के 1:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: कुछ कुछ चीज़ें हमेशा सिलाई कर ही बनाया कर है, चाहे कपड़ो हो, चाहे रिश्तों हो या जीवन हो। घणी मन सु राम राम, आकाशवाणी जोधपुर सु घनघोर सुनने वाली सलोनी सखिया ने आप रेडियो संगनी आराधना जोशी रा, और कोमल आपने भी घणी मन सु राम राम।
1: बिल्कुल, आपने भी और घनघोर सुनने वाली सगली बहना ने मारा घणी मानसू राम राम।

0: बिल्कुल आराधना जी, सोना चांदी रा जेका गहना है बे तो चोरी हो सके, पर हाथा रो जो को हुनर हुया करे वो एक एड़ो गहनो है जो को पूरी जिंदगी अपन साथ निभावे। क्योंकि जब एक महिला आत्मनिर्भर बने तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो जो को पूरा परिवार हुए वो जकी आने वाली पीढ़ी हुए भी ने बात सशक्त है जकी बनिया करे। और आपा देखा ही हाँ कि आज री जकी नारी है बा चूल्हा चौका सु जिम्मेदारियां रे साथ साथ आप रे हुनर सु देश री अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। तो आप जान सका कि जबकि आत्मनिर्भरता है वीरो मतलब सिर्फ पैसों कमानो नहीं है, मतलब आपरा फैसला खुद लेनो और आत्मविश्वास पानो और अपना आत्मसम्मान री रक्षा करनो।
1: बिल्कुल सही बात है कोमल की खुद री पहचान बनाना भी और अपना आप व्यक्तित्व बनाना आज रे समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज जो आप कार्यक्रम ले रहे हैं इमें सिलाई कढ़ाई री बात करेला और कि सिलाई कढ़ाई जी की है आज कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। क्या करे कि आप रज का दुखा रज का धब्बा जिका है वे आप री खुशियाँ हूँ अगर आपने गूंथना है तो आप एक वस्त्र है जिसको तैयार करो और आप री खुशियाँ हैं पेपर है जिसकी बेल बूटा है आप रा मन रहा है वे निकालो।
0: बिल्कुल
1: तो सिलाई भी करनो एक खुशी रो एक जरियो हुआ करे। और आप एक बात और दिक्कत दवानी कि कोई भी पोशाक अगर आप देखा तो आप यूं नहीं कहवा कि आ है जो कपड़ो ये बहुत अच्छा पा या
0: मेरे
1: इरी सिलाई
0: काम
1: बहुत
0: हाँ
1: अच्छी है
0: सिलाई
1: इरी
0: बहुत
1: फिटिंग बहुत
0: अच्छी है
1: अच्छी है
0: काम
1: इरी
0: बहुत
1: कढ़ाई बहुत अच्छी है तो ये सब पता चले कि कपड़े री कीमत तो है ही है पर कपड़े री कीमत 8 गुना जद बड़े जद भी पर काम करोड़ों चौक हो गए। अगर आप बहुत अच्छा कपड़ो ले रहे हो आप 1,000 रुपये का कपड़ा ले रहे हो और आप अगर भी सिलाई कराई हो और अगर वह फिटिंग सही नहीं है तो आप 1,000 रुपया या 1,500 रुपया जो कि भी आप रुपया लगे पे आप सगला व्यर्थ है।
0: बिल्कुल व्यर्थ है। और किया करे नहीं कि सुई में धागो पिरोन वाली जकी उंगलियां कदे कमजोर कोनी हुआ करे, क्योंकि बाप रा पूरा परिवार ही तकदीर ने सागे साथ में ले रा लाबा की जकी ताकत है बारा क्या करे। और आज जकी नींव है बा महिलाएं आपरे विभिन्न तरह रा कामा सु आपरी हाथ री कला सु रखिया करे। अपनी बहने आज इतनी कला में पारंगत है कि बे घर बैठे कला सु आर्थिक रूप सु मजबूर हो रही है। और सब सुंदर बात आ है कि बहने सिर्फ आपरी कला सु खुद रो नहीं बल्कि दूसरी बहने रो भी आपरी कला ने सी भी कला ने सिखार समूह सुजोड़ जन जन तक कला ने पहुंचावे और आप व्यापार भी खड़ो कर रही है और लोगों ने भी आत्मनिर्भर
1: जी
0: बना
1: हाँ
0: रही है।
1: कोमल आप क्यों नहीं कि भी समूह है तो एक समूह में जिकी सिलाई कढ़ाई का है जिकी सखियां इकट्ठी हुए नहीं तो बड़े बे स्थित्व पूर्ण जिकी बातें आवे बारा आवेग बारी भावनाएं बारा विचार बटे एक जगह

0: प्रचलित हुआ है कि एक दूसरे दुख दर्द जो है वह बैठ पूछा करे। और यो भी ज्यादा है कि सिलाई करना केवल एक शौक ही कोने में, वो अपने जीने रो तरीको है वो बताया करे है। और आपने ध्यान है एक अपने के बनी राजस्थान में एक आडी भी है कि सावणरी एक नार स्यू अंगे भार, पचरंगी पाटो बांधे दुनिया ने करे सिंगार। मतलब यू रहे कि छोटी सी एक सुई धागे पर है कि सावनरी एक सुंदर नारी री तरह जी की सुई जी की है, बा कई तरह रा मतलब धागा पैर पर और कई कपड़ा जी का है बना श्रृंगार है जी को करे है।
1: बिल्कुल।

0: कि भाई उसे लाई कढ़ाई रोजे को काम है, मने करनो है, तो आप बताओ कि आप इन क्षेत्र में क्यों आया।
1: मैम ये 2015 की बात है। 2015 में निफ्ट कॉलेज हूँ मैं, फैशन डिजाइनर को कोर्स करियो। बट मैंने रुचिका मैडम हूँ, मुलाकात हुई और बे मैडम इतो अच्छे शानदार तरीके हूँ सिखाया, तो मैंने भी लाग्यो कि मैं भी आगे कुछ अच्छो करूँ, रुचिका मैडम की तरह मैं भी बनूँ और बहन बेटिया ने बहुत अच्छो काम सिखाऊँ। तो
0: बिल्कुल
1: 2015 में मेरे मन में लागू मैं भी शुरुआत करूं।
0: बिल्कुल। देखो क्या करेगी, कपड़ा माथे सुई धागा सू कसी दो काटन वाली उंगलियां। असल में आपरी आत्मनिर्भरता रो इतिहास लिख रही है, और आप भी आत्मनिर्भर हो और सबने बना भी रिया हो। तो आप सिलाई रे साथे साथे और भी कई तरह काम करिया करो, तो कौन कौन सा काम करिया करो आप।
1: सिलाई है, कढ़ाई में हैंडवर्क को भी काम है। हैंडवर्क को काम है जो जो सिलाई करा आप, वो 100 प्रकार धागो चलावने की कला सिखाओ। और मशीन को भी काम है, पीकू है, 10-15 प्रकार का पीकू है, और हर प्रकार की सिलाई को काम सिखाया करा।
0: तो इन मासू सबसे ज्यादा जो को बारीकी रो काम है या मेहनत रो काम है, वो आपने कौन सो लागे।
1: वो सब मेहनत वालों काम कसी दे रहे है, यूं तो सब में मेहनत तो लागे ही
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: पर कढ़ाई में थोड़ो ध्यान ज्यादा देना पड़े। हाथ गो, आंखें गो और सुई गो सारू बो मेल डोल राखनो पड़े। अगर नहीं राखा तो आमनी कढ़ाई खराब हो जाए।

0: जहाँ अबर आप बोले कि भाई कढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े, अपन नहीं ध्यान रखा तो वाज की चित्र उकेरा कशीदागारी करा बस सुंदर नहीं बने। तो अपने जोधपुरी संस्कृति रमाए देखो कि अपने प्रत्येक सखियां जी की है चूनड़ी पर ओढ़ना पर है, लहंगा पर या ब्लाउज पर है जिकी कढ़ाया कराया करे। तो अठे अपने जोधपुर में सबसे ज्यादा जिकी कढ़ाई रही जिकी डिजाइन है वह कौन सी है?
1: वो मैम गोटा पत्ती है और जद्दू जी का काम है,
0: अच्छा।
1: और जो पुराने टाइम की जो डिजाइन है वे आजकल की लड़कियां वापस से ले रही है, जो पुरानी फैशन है वो वापस शुरू हुई है
0: तो अब जी आप बोले कि पुरानी फैशन पाची शुरू हुई है,
1: अब।
0: तो आपने जो पुराना काम है ए आवे आपने,
1: हाँ सब आवे
0: तो आप जो पुराना काम है किरकनो सीखिया?
1: एमएम, जो पहले के पुराने मेरे दादी जी के और माता जी के पास जो ओढ़ने थे, जो उनके वो पहनते थे कुर्ती कांजली, हमारे विष्णु पोशाक वो साड़ा की है, उस पे जो काम थे वो मैंने अब वापस शुरू किया है। मतलब वो कड़े
0: मतलब
1: देख देख के। हाँ
0: आप अपने बुजुर्गों खनु दादी नानी खनु वो हुनर जी को है बटे सु इन्हें उठायो और आप जीवन में डाल और लड़कियां ने भी आप सिखा रिया हो। तो जब आप आसी सीखियो आप वो जो काम करो तो इरमाई अपने किन प्रकार की मुश्किलें आवे, क्योंकि कोई भी काम करा आप तो आसानी तो नहीं है भी में कठिन कठिन कठिनाइयां तो होया करे, तो आपने भी कठिनाई सामना तो करना ही पड़ता वेला।
1: हाँ मैम, कठिनाई का सामना तो करना पड़े पर हर मुश्किल को समाधान है। अगर हम चाह ले कि हमको ये करना है, अगर हमारी कोशिश है करने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: सही है कि जड़चा है बठेरा है, तो आवाज सही है कि मुश्किलें और सामना तो अपने करना
1: करना
0: ही चाहिए
1: पड़े।
0: और मुश्किलें और सामना करा तो
1: अगर
0: ही
1: जीवन
0: आगे
1: में
0: बढ़ा है।
1: संघर्ष है, मतलब कठिनाई है, तो ही हम आगे बढ़ पावे। अगर जीवन में कठिनाई नहीं है तो जीवन को कोई मतलब भी नहीं है।
2: बिल्कुल। देखो कठिनाई की बात आप कर रही हो तो ये बात आप शुरू करिए कि आप रे काई कई समस्या आई, तो सबसे पहली बात तो आए कि आप मशीन पर इतनी देर तक बैठा रहवा तो भी अपने के पीठ पर भी जोर पड़े, अपना एक जगह आप बैठा रहवा तो आंखिया पर भी नजर भी अपने एक जगह रखनी पड़े, तो अपनी सेहत से जुड़ी और भी कई सावधानियां है जब अपने सिलाई रे दौरान या राखनो चीजें ताकि अपने सेहत है जो कुछ सही रहे, क्योंकि लंबा टाइम तक आप बैठकर काम करा।
1: एम 2 घंटा लगातार काम करने के बाद 10 मिनट रेस्ट करनी चाहिए। 10 मिनट रेस्ट कर और सापा काम करने बैठ जाए
2: मतलब बीच
1: तो
2: बीच में गैप जरूरी
1: गैप
2: हुआ करे।
1: लेना
2: हाँ,
1: जरूरी
2: अगर
1: है।
2: आंखिया पर भी जोर पड़े तो आप पाए थोड़ी थोड़ी देर में अगर नजर ने थोड़ी घुमावा तो अपनी
1: हाँ,
2: आंखिया ने भी आराम
1: आगे
2: मिले।
1: आराम मिले।
2: बिल्कुल। देखो फैशन री बात अबार करी ही तो डिजाइना बदल रही है, फैशन भी ट्रेंड में अलग अलग डिजाइना चाले आजकल। आपा कपड़ा सिला तो कपड़ा में भी लोग है जो फोटो दिखा आपने कहे कि यार डिजाइन बनाओ, तो विन टाइम आपने कई चुनौतियां का सामना करना पड़े कि तो टाइम भी में लाग जावे एक बार में सही डिजाइन सेम बन जावे कि आपसे।
1: जो वो डिजाइन लेके आवे है मार्केट ने, तो बा बेना ने सेम डिजाइन तो बना दें, पर मैं सोचूं वह सेम डिजाइन नहीं, कुछ हटर अलग नई डिजाइन बनाने की कोशिश करें। सेम तो है तो सेम हो, थोड़ी अलग बनाऊंगा, नई डिजाइन बनाने की तैयारी
2: तो एक बार
1: रखें।
2: में बड़ा डिजाइन बन जावे आपसे,
1: हाँ,
2: तो ये अनकनी हुई है कि आपकी बड़ा डिजाइन कई बार शुरू शुरू में मान लो क्योंकि आप सीखा जत तो हुई है बड़ा डिजाइन खराब हुई है या आप वापस सुधार या हो इनमें आपने कितना टाइम लगे?
1: मतलब खराब तो नहीं हुई है आज तक, काम भी बहुत अच्छे तरीके से क्यों है, तो खराब उनको सवाल ही नहीं है। एक बार डिजाइन दिखा दी तो भी डिजाइन बेहतर ही डिजाइन बनावा।
0: तो जी अभी आप बोले कि बेहतर डिजाइन बनाओ, तो जबकि नई लड़कियां आप खन सीखन आवे तो सबसे पहला बने आप सिलाई के दो।

0: चाहे मशीन रो काम के दो या कढ़ाई रो काम के दो, आप 500 से पहला कहीं सिखाओ, शुरुआत क्या
1: कोई तो
0: करो।
1: सिलाई सीखे और कोई कढ़ाई सीखे, मतलब सबकी अलग अलग
0: हाँ
1: रुचि
0: हाँ
1: है।
0: तो
1: तो
0: जहाँ सिलाई सीखे जिकन कहीं सिखाओ आप।
1: सिलाई में शुरुआत राजपूती सूट में शुरुआत करें, मतलब पहले पेपर मत कटिंग कराना वगैरह वो नहीं है, डायरेक्ट कपड़े माती कटिंग करावा और पहलो सूट है परफेक्ट ही बने वांगो एकदम। जो दर्जी सिले नहीं भी अच्छो ही बनाए पहलो सूट हो आपको। तो
0: अच्छा
1: आप किसो कपड़ो जो को यूज है जो को लिया करो सबू पहले सिलाई आसानी से सीखी जावे। सूती कपड़ो कॉटन।
0: अच्छा, और आप कटिंग करो बिना भी कोई आप पैटर्न वगैरह किरा क्या करो?
1: हाँ फरमा है,
0: अच्छा, भी सो आसानी
1: जो
0: सू
1: कोई
0: जावे।
1: बेना घर बैठी सीखनी चाहे आ नहीं पावे, कोई जिम्मेदारी हुए, बच्चा छोटा हुए, तो बा वास्ते फरमा भी कटिंग कर तैयार रखूड है। बे फरमा भी देवा, बाद में साथ में वीडियो भी बना देवा, मतलब के तरीके आप कटिंग कर सिलाई कर सको।

0: तो एक चीज और पूछा आपने कि अब तक आप सागे कितनी लड़कियां जिकी है जुड़ चुकी और कितनों काम सीख चुकी।
1: आज तक 2500+ बेना सिलाई सीख चुकी है, सिलाई और कढ़ाई। और अभी क्लास में 100 लड़कियां हैं। अगले महीने 100 एडवांस मतलब उनको रजिस्ट्रेशन हो रखी है। बार छुट्टियां तो और ज्यादा ही है। और बहुत अच्छी शौक है हर बहना ने सीखने वास्ते कि मैं कुछ न कुछ सीखा।
0: तो जब आप सिखाओ लड़कियां ने और कोई लड़की जी की है आत्मनिर्भर बन जाए या बाजिया आत्मनिर्भर बन आप खुद सेंटर खोले या कोई स्कूल में टीचर बन जाए या घर में एक शिक्षक के रूप में काम करें और आपने पता चले कि हमारे सिखाए तो उनसे मैं आपने किया लगे।
1: मतलब उस टाइम के मैम में एक शब्द में बता ही नहीं सकती, वो बहुत खुशी मिलती है। और कई बहना सिलाई स्टार्ट करे या आपको बुटी काम स्टार्ट करे तो फर्स्ट बार वो मतलब पहली सिलेरी और मिठाई लार खिलावे तो मी टाइम तो आए क्या भर आज की हम मेहनत रंग लावे।
0: कि भैया क्यों जितनी मैं मेहनत करी
1: हाँ
0: ये जीवन जो कही सामने वाले रो सफल हुई है।
1: सफल हो रही है तो और ही ज्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी और अच्छो सीखो मैं।
2: बिल्कुल किया करे ना कि सूरज उग्या पहले जिनरा हाथ काम यानी सिलाई कढ़ाई में लाग जावे तो उनरे घर रे मायने ऊंचे या छुवन सुवी ने कोई नहीं रोक सके। तो वही ऊंचाई आज आप छू रहे हो। तो निर्मला जी ये जो बदलती फैशन है डिजाइनर दौर है तो इन टाइम जो को पारंपरिक कढ़ाई और इरा हाथरो काम री जो की अहमियत है बाकाई है आज रे टाइम में जो को सिलाई सीखनो महिलाओं और युवा रे वास्ते कितो उपयोगी हो सके।
1: बहुत ज्यादा उपयोगी है, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे कम पढ़ी लिखी हो। हर बहन के हाथ में हुनर होना चाहिए। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप मन पसंद की डिजाइन ड्रेस तैयार

0: कर सके, मनपसंद का सूट तैयार कर सके, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर बहन के हाथ में हुनर होना चाहिए।
1: बिल्कुल, हुनर होना चाहिए। और सिलाई देखो इतनी बढ़ गई है, खुद ने आवे तो वह
0: खुद का
1: बच्चा बचत
0: सीलन
1: कर
0: पहन
1: सके।
0: सके और पैसा भी बचत कर
1: तो जी
0: सके।
1: क्रम आप सिलाई सिखाओ तो जी की नाप लेने री जी की चीजें हैं वे मतलब किन तरह सिखाओ कि वे जी के स्टूडेंट है आपरा वे आराम समय

0: तो जिया घर भी संभालना है, अपने नयो काम भी करना है, सिलाई भी सीखनी है, कढ़ाई भी सीखनी है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो आन सगला ने लिए और तालमेल बिठा काम करना कितना तो मुश्किल है।
1: मैं वैसे देखा तो मुश्किल है, पर अगर परिवार को सपोर्ट है तो मुश्किल भी नहीं है।
0: जी हाँ, पर आप सपोर्ट की बात करी तो आप रो खुद रो संस्थान है, तो वो संस्थान जब आप चलाओ तो भी मैं आप रो किन किन सपोर्ट है जिसको मिलो।
1: सबों पहले तो पापा मम्मी और दादा दादी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और ससुराल में मेरे पति का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब मैं घर को काम करूं तो साथ में हेल्प करा देते हैं।
0: तो जी हाँ, निर्मला जी अभी आप बोले कि भी तालमेल बिठाना जरूरी है, तो तालमेल की बात चली तो अगर आप खाने कोई सीखने आवे तो किसी जगह आप खाने सीखने आ सके मतलब, और आपरा जी का कोई फोन नंबर है तो वे भी बताओ ताकि सखियां हैं आपसे जुड़ सके, वे भी आपसे नए नए काम जो है वो सीख सके।
1: 9461068729,
0: एक बार फिर से है जी का आप नंबर बोल दो।
1: 9461068729।
0: बिल्कुल, आपका नंबर जी का है सखिया, नोट कर ली वेला, और कोई भी अगर सिलाई सीखना चाहेला या कढ़ाई सीखना चाहेला तो आप जरूर जरूर संपर्क करेला।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్ చే.

0: 台。
1: बिल्कुल निर्मला जी, अब आप सो पूछनी चाहवा कि जब आपरे कने कोई एडी महिला सीखण ने आवे सिलाई या फिर कढ़ाई, जका आर्थिक रूप सु कमजोर हुए या फिर कोई घरेलू दिक्कत सु जूझ रहे हुए, तो विन टाइम आप वारा हुनर ने आत्मविश्वास रे साथे किया देखो वाने किया समझाओ।
2: मैम काफी बेना एडी है, भगवान करे एडी परिस्थिति नहीं हुए, पर कोई अंग पति नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई अंग मतलब भाई नहीं है, घर परिस्थिति मतलब बहुत कमजोर है। तो बा बेना ने मैं बहुत बड़ो सपोर्ट दू और काम सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करू। अगर कोई एडी बहन, मैं हमारे सेंटर ने एडो अच्छो बनाना चाहूँ कि कोई रुपया की तंगी के कारण हुनर मतलब रुक जाए कि मैं कुकर सीखा,
3: बिल्कुल।
2: तो बाने मैं यूं चाहूं कि रुपया कारण आम जोधपुर की कोई भी बेटी मतलब मन में ऊ नहीं होचे गए मेरे का रुपया वार, तो खास मैं वो काम सीख ला, तो बाँ बेना मैं पूरी सपोर्ट करनी चाहूँ।
3: बिल्कुल। भविष्य में आप रो कई सपनों है, आप कई सोचो कि मतलब मैंने इस तरह एक प्रोजेक्ट तैयार करना है या कोई बहुत बड़ी जहाँ बुटीक खोलना है, आगे आप रोका ही सपना है?
2: मैम सब बड़ो सपना वही है, ट्रेनिंग सेंटर ने बहुत बड़ो सेंटर बनाना है। अब आज जो मैं पहले बात बताई आपने वही है कि कोई भी बहन बिना हुनर नहीं रहे, सभी बहनों ने मैं बहुत अच्छा हुनर सिखा सकूं, जो भी सीखना चाहे, चाहे सिलाई को है, चाहे मशीन की कटाई है, चाहे हैंडवर्क कटाई है,
3: और
2: सब बड़ो वही सपना है कि मैं हर बहन ने हुनर सिखा सकूं।
1: तो निर्मला जी, जब आप थक जाओ काम करने रो मन नहीं हुआ, तो विन टाइम आप वापस काम ने शुरू करने रे जकी प्रेरणा है वह आपने कटा सु मिले।
2: वो बहुत सारी महिला को देख कर मिलती है, हर रोज 100 महिला से मुलाकात होती है, तो कुछ न कुछ मैं भी सीखा बाने, पर मन भी बाऊ बहुत कुछ सीखने मिला है। बहुत दूर दूर सीखने वास्ते आवे, 100-80 किलोमीटर दूर सीखने वास्ते आवे, तो मैं भी सोचू भाई इतनी दूर हूँ आर सी कर गए वापस चार वे भी काम करिए, तो मन भी करना चाहिए।
3: एक चीज और पूछा आपने कि जी आप आज आप रेडियो पर आया हो, आप इंटरव्यू दे रिया हो, आप इंटरव्यू सु कई सखियां जी की है प्रेरित वेला, तो जिन्हों में सिलाई करो बन से आप रेडियो भी सुनो।
2: हाँ मैं सुनो मैम,
3: तो रेडियो पर आपने जिका प्रोग्राम आवे भी आपने क्या लगे?
2: बहुत अच्छा लगे।
3: तो जब जिकड़ा आप प्रोग्राम सुनता रहो, गाना सुनता रहो, तो बेटा आपने काम है जिको आराम लगे।
2: हाँ मतलब वो थकान नहीं लगती है।
3: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और आपसे वो भी पूछनी चाहवा कि आपरे इस सफर रे मायने आपरो सबसे बड़ो सपोर्टर है या सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट देवन वालो है, वो सबसे बड़ो सपोर्टर कौन रहियो?
2: माता पिता, वो दादा दादी है और हस्बैंड है।
1: अच्छा बिल्कुल।

0: तो जबकि महिला या घर बैठर आत्मनिर्भर बननी चाहे या आपरो छोटो बिजनेस शुरू करनी चाहे, तो निर्मला जीवा ने आप काई सलाह देनी चाहो?
1: मैं यही सलाह देनी चाहूँ, काफी बिना कने काम हुए नहीं है, और अगर कहीं कने काम है तो वे करनी नहीं चाहे। मतलब फोन देखने अच्छो है कि घर में काम करो। अब जो सिटी में है तो बच्चा स्कूल भेज दिया, स्कूल भेजने के बाद में कोई काम नहीं है, फ्री बैठी है, तो भी टाइम की आप मतलब काम जरूर करा। फोन देखने रील चलाने बजाय आप कुछ अच्छो काम करा,
2: खुद आप खुद कमावा
1: खुद कमा
2: और तो
1: सका।
2: भी जगह रुपये चमक जी की है वह अलग हो, भी सागे सागे अपना व्यक्तित्व जी को है वो भी

0: सीख रहे हैं। तो बिल्कुल निर्मला जी, अगर हुनर हाथा में हुए तो हौसला, और हौसला दिल में तो घर्रा एक कोना में भी आत्मनिर्भरधारी एक बड़ी कहानी है जो कि लिखी जा सके। तो निर्मला जी, आज आपसे बात करर आ बात साफ होगी कि सिलाई कढ़ाई सिर्फ कपड़ों सिलन रो काम को नहीं, बल्कि सपना ने आकार देवन रो और महिलावा ने पेरा पर खड़ो करन री एक सुंदर कला है। और घर्री जिम्मेदारियां ने संभालते हुए जोधपुरी पूरी संस्कृति ने संजोनो और सैकड़ों महिला वाली जिंदगी बदलने एक मिसाल है। तो निर्मला जी, जोधपुर आकाशवाणी रा गणगौर कार्यक्रम में आप रही खूबसूरत सफर और विचार ने साझा करन रे वास्ते पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारी तरफ आकाशवाणी ने बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आकाशवाणी गणगौर चैनल ने सुने हैं बाने भी बहुत सक्या ने भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲ ਪਰਣੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੋ ਕਾਢਿਆ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਚਪਨ ਸੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਔਰ ਧਾਗੇ ਰੋ ਜਿਹੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਛੋਟਾ ਜਦ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਜਦ ਗੂਦੜੀਆਂ ਸਿਲਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿਲਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਾਪ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾ ਪਰੀ ਔਰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠੋ ਪੱਗਾਂ ਸੂ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਸੂਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਰੋ ਜੋ ਕੋ ਗੁੱਸੋ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਜੀ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਢੱਕ ਰੱਖਤੀ ਔਰ ਆਜ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਢੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋ ਪਹਿਲੋ ਜੋ ਕੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪ ਢੱਕ ਪਰਾ ਰੱਖੋ
1: बिल्कुल। और अगर पुराना टाइम रही आप बात करी हो तो सबसे पहले तो इरो जो फायदो है काम सुबह आपा आर्थिक सहायता तो हुई है साथ ही साथ सिलाई बुलाई करण सु जो को मानसिक तनाव हुए वो कम हुए और आज की एक थेरेपी री जिया क्या काम करया करे जिसु आपने जो की एकाग्रता है बा बढ़े। और पहले टाइम री बात करें तो पहले सुई सु हाथ सु सिलाई करता हा तो हाथ सु कपड़ा सिलाया जाता मशीन तो बहुत बाद में आई पर हाथ सु जद सिलाई करता तो उंगली रे मायने सुई नहीं चुभे इन रे वास्ते एक थीम ली यानी अंगुष्ठा ना आवती विरो आविष्कार हुयो 17वीं शताब्दी रे मायने जो को डच रो कारीगर हो वो करियो ताकि दर्जी है बे सुरक्षित सिलाई कर सके।
0: बिल्कुल सही है। और सिलाई कढ़ाई की बात करा कोमल तो कई सिलाई कढ़ाई से जुड़ी जी सरकारी योजना है बारे तहत भी अपने सखियां जकी है जुड़ पर आप जीवन जको है संवार सके जिया मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना जिकी है इरो मतलब लाभ उठा सके है महिला निधि जिकी है आप भी लोन देवन वास्ते है कि अगर कोई सखियां जिकी है अगर कोई मशीनें खरीदना चाहे या कोई सेंटर खोलना चाहे तो बटो आराम से जो आने लोन मिल सके।
1: बिल्कुल। और मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम है जकी आप महिलाएं जकी है सिलाई कढ़ाई डेटा एंट्री है या ऑनलाइन मार्केटिंग है एडी जक जितना भी काम है बे सीधा कंपनियां से जुड़न कर सके ताकि बे बढ़िया कमा सके साथ ही साथ लखपति दीदी योजना है जिरे मायने डेयरी है सिलाई कई शुरू कर

0: तो कोमल सिलाई कढ़ाई सीख पर कई तरह रो केरियर है जिसको बना सका, या कोई कोई मान्यता प्राप्त संस्था है या कोई अनुभवी टेलर है बड़ों जुड़ पर आपा खूब सारी जहाँ सिलाई रो काम जो है वो आप ले सका। घरे बैठे आप जहाँ साड़ी है फॉल लगाना है पिको करना है ब्लाउज सिलना है पेटीकोट है और कई तरह के नहीं गारमेंट है जिसका आप सिल सका, तकेरी खोलिया है बेडशीटें आप तैयार कर सका। तो इस आप कहें कि अपना बारे भी कौन जानो पड़े और घरे बैठे ही आप काम कर सका। इनमें सगे सगे अगर आप बहुत भी मास्टर डिग्री आप ले रखे हो तो आप कोई कॉलेज है कोई स्कूल है या जहाँ पर गर्मियाँ रहे छुट्टियाँ रहा दिन है चल रहे हैं तो बैठे भी आप जहाँ 2 महीना 3 महीने सेंटर जिको है वो खोल लो तो आपका ने सिलाई सीखने वास्ते भी कई सखियाँ जिकी है आ जावे।
1: बिल्कुल। और इतना काम आप बता रही हो कि इतना इतना काम आप कर सका इस क्षेत्र रे मायने, तो सबसे पहले तो देखो काम शुरू करने पहली वो जो को मशीन को रख रखा हुआ है वो किन तरीका से करना चाहिए इरी जानकारी आपने होनी जरूरी है। तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले तो आपने जो की मशीन है मेरी रोजीना साफ सफाई होनी जरूरी है क्योंकि मशीन रे मायने जो छोटा छोटा धागा हुआ करे वे फंस जाया करे। तो इनकी टाइम टाइम आते सुईरी प्लेट और स्क्रू खोलर ब्रश की मदद से आप बोबिन केसरी इरे दांता रे बीच री फसेड़ी जो की माटी है बिना आप साफ करो। और टाइम टाइम आते इरे मायने जो को तेल आया करे अलग तेल आया करे वो आप कलपुर्जा में दे वो जो को आप मशीन है जो को अच्छी तरह से चाल सके। और जब आप तेल देवा तो विने थोड़ी देर आप अगर से बिना कपड़ा के चलावा तो मशीन रा जका सगला पार्ट हुए वहाँ तक तेल है जो को पहुँच जाया करे। और एक ही सुई ने आपने ज़्यादा लंबा टाइम तक काम में नहीं रहना है क्योंकि बस सुई जकी है बार टेढ़ी हो जावे और बाद में जो को धागो है वो सही कौन निकलिया करे।
0: बिल्कुल। और कोमल जी के आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो आप ऑनलाइन द्वारा भी सिलाई सिखा भी सका और सीख भी सका। और
1: बिल्कुल।
0: मशीनें भी कहने वाला युग है तो कई तरह की मशीनें हैं जिनकी अब आजकल आएगी है जहाँ

0: कि दर्जी री सुई कदे मोटी में माटी में कोनी डूबिया करे, क्योंकि दर्जी री सुई कदे बेकार नहीं बैठे, बा हमेशा कपड़ा में पिरो ही रहे। इरो मतलब वही है कि कोई भी हुनरमंद इंसान कदे भूखो नहीं मरे, बिना कने हमेशा कोई काम और कमाई रो जो को साधन है वो हमेशा रिया करे।
1: और एक बात और है कोमल, कि जिको काम सुई कर सके नहीं वो फावड़ो भी कौन कर सके। कि अगर आप ये नहीं समझा कि सुई है जिकी छोटी सी है, आ छोटी सी सुई बहुत बड़ो कांटो जिको है वो निकाले करे। अपना हाथ में जब कांटो फंस जाए तो सीधा अपन सुई ढूंढने जाओ। और अपना बुजुर्ग क्या करता कि सुई ने मतलब भाई कोई कोई एक धागो जो है वो पिरो नहीं रखना चाहिए। अपन जैसे कहें नहीं मारवाड़ी भाषा में आप कि नागी नहीं रखने चाहिए, मतलब बिना कोरी नहीं रखने। क्योंकि अगर आप कोरी रखो ला तो बा कठिन कटी गिर जाए ला, आपने दिख लिया। अगर धागो पिरोड़ा रहे वाला तो सुरक्षित रहे वाला। तो आज रो जो कार्यक्रम हो उद्देश्य तो ये हो कि कोई भी काम जो है आप आत्मनिर्भर वास्ते कर सको। यदि आप पूर्ण रूप से मेहनत धैर्य और समर्पण भाव से करो ला तो आपने कोई सहारे की जरूरत नहीं बढ़ेला। आप खुद कोई सहारो बनोला और इन्हें सागे सागे दूसरा लोगों ने भी आप आत्मनिर्भर करोला। तो कोई आपने आपकी तारीफ करे या ना करे, अगर आपने काम है तो आप खुद अपने आपकी तारीफ करो और आप जीवन है जिसको संवारो। तो आज इन कार्यक्रम में आप सागे ये दो सखियाँ कोमल राठौड़ आराधना जोशी, आज री प्रस्तुति ही राजेश लामरोड़।
0: संयोजन हो मनीष कुमार सोलंकी रो, इंद्र साथ ही अब आपरी दोनों सखिया ने दिराओ सीख। चाला
1: चला
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग,

0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है।

0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइड्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की

0: 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड संख्या 1290।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा

0: वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वारभाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालूमरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालूमरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनके दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो,

0: सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
1: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
0: हाँ।
1: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
0: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
1: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सके।

0: किसी को खुशी नहीं दे सके। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
1: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
0: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
1: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
0: हाँ।
1: संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
0: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
0: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
1: हाँ ये तो है।
0: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
1: सही कहा।
0: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
0: अजी सुनिए।
1: हाँ।
0: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
1: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
0: हाँ।
1: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
0: अरे अरे इसको भी डालो।
1: हाँ हाँ,
0: ये देखो
1: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
0: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा
2: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा तिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
0: हाँ।
1: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
0: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
1: हाँ।
0: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगे।
1: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।

0: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
1: ऐसा नदी नहीं लगे जैसे हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
4: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
5: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
6: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, और नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे आज की प्लेलिस्ट सुनकर। और आज की इस प्यारी सी शाम में हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी ही रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता, और मेरे साथ हैं,
1: और मैं हूँ आयुषी।
0: जी हाँ दोस्तों, और आज की, जैसे कि मैंने बताया कि आज का दिन भी स्पेशल है, और आज की जो प्लेलिस्ट है वो केवल और केवल आपके लिए है। तो सुनिए इस प्लेलिस्ट का आज का ये पहला गीत।

0: कभी सोचा है, अगर हमारा दिल सच में बोल पाता तो वो हमसे क्या कहता?
1: शायद वो बातें कह देता जो हम कभी किसी से नहीं कह पाते।
0: दिल शायद ये कहता, तुम मुझे हर बार चुप क्यों करा देते हो?
1: जब रोना होता है तब मुस्कुराने को क्यों मजबूर कर देते हो?
0: जिसे भूलना चाहिए उसे उसी के पीछे क्यों भागते हो?
1: दिल शायद ये भी कहता कि मैं हर बार टूटता हूँ और तुम हर बार कहते हो मैं ठीक हूँ, आखिर क्यों?
0: तुम लोगों को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में आने देते हो जब पता है कि वो एक दिन चले जाएंगे।
1: और शायद दिल ये भी कहता कि तुम्हें पता है तुम किससे प्यार करते हो, फिर भी खुद से झूठ क्यों बोलते हो?
0: तुम स्ट्रांग बनने के चक्कर में खुद को वीक क्यों महसूस कराते हो?
1: दिल शायद ये चाहता कि बस एक बार मुझे जैसा हूँ वैसा रहने दो। तो दिल जो चाहता है हमें शायद उसकी सुननी चाहिए, है ना विनीता?
0: बिल्कुल, हर बार लॉजिक मत लगाओ, कभी कभी मुझे फील करने दो।
1: बिल्कुल। तो विनीता तुम क्या कहती हो कि दिल अगर बोल पाता तो क्या कहता?
0: बिल्कुल यही सब कहता आयुषी, और इस ये चीज़ें जो हमने बोली है ना, और ये ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ ही है और दिल के ही आवाज़ को हमने शब्दों में बयां किया है।
1: हाँ बिल्कुल। क्या होता है ना, हम लोगों की भीड़ में आकर के, लोगों के दबाव में आकर के हमारा दिल जो हमें कहता है हम उसकी नहीं सुनते। हम सबकी सुन लेते हैं, चार लोगों की सुन लेते हैं, लेकिन खुद की नहीं सुनते। और इसी के कारण हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारा दिल चाहता ही नहीं है। फिर कितना भी चाहो आप उस काम में अपना मन लगाओ, आप नहीं लगा पाओगे अगर आपका दिल वो काम नहीं करना
0: और वो
1: चाहता।
0: करने के बाद भी हम मतलब फिर बाद में महसूस होता है कि हाँ यार, काश हमने खुद की सुनी होती, खुद की सुनकर वो चीज़ कही की होती, तो शायद आज जहाँ हम हैं वहाँ नहीं होते।
1: तो दोस्तों अभी भी हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको पता है कि आपका दिल क्या चाहता है और आप कहाँ जा रहे हो और आपको कहाँ जाना चाहिए। एक बार अपने दिल की सुन करके देखिए। मुझे लगता है एक बार अगर आपने सुन ली ना तो शायद आप वो डिसीजन ले लो जिससे आप जहाँ जाना चाहते हो, जिस सुकून को आप पाना चाहते हो, आप उस सुकून तक पहुँच जाओगे। फिलहाल हम आपको पहुँचाते हैं इस सुकून भरे गाने की तरफ।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे एक विशेष संवाद, राधे श्याम विश्नोई की राहुल से बातचीत, जिसका विषय रहेगा जनगणना 2027, हमारी भागीदारी, हमारा भविष्य।
1: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल, और आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में एक खास शख्सियत जुड़ चुकी है। जहाँ मिलते हैं उस कार्यक्रम में उन लोगों से जो समाज और देश की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ जनगणना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाई है। राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी। मैं राधेश्याम अध्यापक हूँ और ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, और अभी जनगणना 2027 के इस कार्यक्रम में प्रगणक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई।
1: राधेश्याम जी, जब भी जैसे ही आपको ये पता चला कि जनगणना में भी आपकी भूमिका जो है वो होने वाली है, आपको ड्यूटी दी जा रही है, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी उस दौरान क्या रही?
2: सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यह रही थी कि जो पिछली जनगणना हुई उसके बारे में जैसे हमने सुन रखा था, उससे यह जनगणना बिल्कुल भिन्न रूप में होने वाली है। तो सबसे पहले तो यही एक ऊहापोह की स्थिति थी कि इस बार किस प्रकार से काम किया जाएगा, क्या हो सकता है, कैसे किया जाएगा, और कौन कौन से क्षेत्रों में हमको जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसे ही कुछ प्रश्न मन में उत्पन्न हुए थे।
1: राधेश्याम जी, हालांकि हम ये जानते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं कि देश के सभी देशवासियों को जनगणना की आम जानकारी तो पता होती ही है, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं कि जनगणना को इतना सीरियसली नहीं लेते कि यार अरे क्या है, ठीक है, हो जाएगा। मैं चाहूंगा बताओ कि भाई जनगणना जो है वो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है?

0: जैसे जनगणना का जो कार्यक्रम है प्रति 10 वर्ष बाद में आयोजित होता है और हर 10 वर्ष बाद में भारत की जनगणना की जाती है, लेकिन पिछले 2021 में कोरोना काल के कारण जनगणना हो नहीं पाई थी और उसको अभी किया जा रहा है। इस जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के निर्माण में और जो नीतियां बनती है उनके निर्माण में भी इन आंकड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम सबको इस प्रकार का बात तो समझना चाहिए कि ये जो आंकड़े हैं ये केवल और मात्र केवल आंकड़े नहीं, ये नीति निर्माण के लिए और हमारे सुरक्षित और एक सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।
1: राधेश्याम जी, जनगणना में जो है वो अपनी अपनी हर डिपार्टमेंट से सबकी अलग अलग ड्यूटियां लगाई जाती है। मैं
0: हाँ
1: जानना
0: जी,
1: चाहूंगा, एक शिक्षक के तौर पर आपका जो दिन है वो जनगणना ड्यूटी में किस तरह से बीतता है? क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं? क्या क्या ऊपर से टारगेट्स आते हैं? क्या कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती है? आपका एक पूरा शेड्यूल क्या होता है उस दौरान का?
0: सर्वप्रथम तो हमको जनगणना ड्यूटी के दौरान एक ब्लॉक आवंटित किया गया, उसी ब्लॉक में हमको काम करना है। जैसे मैं प्रगणक हूँ तो प्रगणक को एक HLB जिसको कहते हैं हाउस टेस्टिंग ब्लॉक, उसी एक ब्लॉक में जितने भी घर है मकान है उन सब की हमको जनगणना करनी है। तो शेड्यूल के तौर पर देखें तो सुबह वही स्कूल का जो टाइमिंग होता है 7 बजे घर से निकलना और प्रत्येक घर तक दस्तक देना, और अपना जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में कोई भी चाहे पक्का हो चाहे पक्का मकान हो किसी भी प्रकार का घर पीछे नहीं छूटे, इस प्रकार का हमको स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है और हमारा भी प्रयत्न रहता है कि कोई भी घर पीछे नहीं छूटे। और जब तक टारगेट की बात है ये तो केवल 14 जून तक इस कार्यक्रम को पूरा करना है, तो ऊपर से टारगेट वैसे अलग से निर्देश नहीं मिलता कि प्रतिदिन इतना काम करना है या नहीं करना, लगातार और निरंतर काम करते रहना है। और अपना ब्लॉक है उस ब्लॉक में कोई भी घर पीछे नहीं छूटे और किसी की भी गणना पीछे नहीं रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला सवाल मैं जानना चाहूंगा राधेश्याम जी आपसे कि भाई जब भी आप घर घर ढाणी ढाणी जनगणना के कार्य के लिए पहुंचते हैं तो क्या जनता द्वारा देशवासियों द्वारा आसानी से आपको जानकारी प्रदान कर दी जाती है या फिर कभी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है?
0: मैं मेरे व्यक्ति के तौर पर अगर बात करूं तो मैं जैसे यहाँ पोस्टिंग ग्रामीण परिवेश में है और जो मेरा ब्लॉक है वो भी गांव की छितई हुई ढाणियों में है, तो उन ढाणियों के जो लोग हैं बहुत ही सिंपल जिसे कहते हैं साधारण परिवेश के हैं, और उनको अगर थोड़ी सी बात को आसानी से समझाया जाता है तो वो आंकड़े तुरंत और सहजता से उपलब्ध करवा देते हैं। और इसमें वैसे देखा जाए तो केवल और केवल घरों की गणना है, इसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारियां या कुछ इस प्रकार का मांगा नहीं जाता है तो वो सहजता से उपलब्ध करवा देते हैं। हाँ, कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आनाकानी भी करते हैं या कुछ गलत जानकारी देने का प्रयत्न भी करते हैं, तो उनको इसका महत्व समझाते हैं तो वो भी फिर ठीक से जानकारी दे देते हैं।
1: अच्छा श्याम जी, जनगणना को लेकर कई तरह की जो है वो भ्रांतियां भी चल रही है कि भाई आपको OTP देना पड़ेगा, आपको अपनी विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी। तो एक जनगणना करने पर जब भी आप किसी के घर में जाते हैं तो उन घर वालों को जो है विशेष तौर पर किस चीज का ख्याल रखना है ताकि जो वो है वो सेफ रहे हमेशा, किसी तरह की कोई भ्रामक जानकारी जो है वो फैले ना, किन किन चीजों का मुख्य तौर से उनको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई आपसे सिर्फ यही जानकारी ली जाएगी, इसके अलावा आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें?
0: जनगणना कार्य जो है प्रगणक, अगर जनगणना करने के लिए आपके घर पे आते हैं तो आप केवल उनको जनगणना से संबंधित आपके घर की जानकारी ही प्रदान करें, किसी भी प्रकार की आपकी आर्थिक जानकारी जैसे बैंक की डिटेल्स या मोबाइल पर आने वाली किसी प्रकार की OTP आपसे कभी नहीं पूछी जाती, और आपके जो मोबाइल नंबर है वो भी केवल जनगणना उपयोग के लिए ही काम में आएंगे, इसी प्रकार की जानकारी ली जाती है। इसके अलावा आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन की या अन्य किसी भी प्रकार की जिससे आपको आर्थिक या मानसिक किसी प्रकार की प्रताड़ना हो ऐसा कोई जानकारी हमको न तो कभी देनी चाहिए और न आपसे प्रगणक मांगेंगे।
1: राधेश्याम जी, इस बार जो है वो जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल तौर पर हो रही है, ठीक है?
0: हाँ जी,
1: तो इसके क्या कुछ मुख्य प्रभाव आप देखते हैं कि भाई किस तरह से सटीकता और परफेक्शन के साथ काम हो रहा है कंपेरेटिवली जो पिछली जनगणना हुई थी और इस बार जो हो रही है?
0: पिछली जनगणना थी वो पूरी तरह से ऑफलाइन थी, यानी कागजों के ऊपर जो सीटें मिलती थी कारण

0: जनसंख्यकों को उनके ऊपर उनके डाटा वो एकत्र करते थे। लेकिन इस बार की जो जनगणना है वो पूर्णतया डिजिटल है, यानी आपके पास में हमें जो हमारा मोबाइल है उसके ऊपर एक HLO ऐप डाउनलोड करना है और उस HLO ऐप के अंतर्गत ही हमको वो पूरी जानकारी उसमें एंटर करनी है और उसके बाद में डाटा सिंक होने के बाद में पूर्णतया डाटा गोपनीय हो जाता है, यानी हम न तो किसी के साथ साझा कर सकते हैं और न ही कोई हमसे पूछ सकता है डाटा। तो पिछली बार की तुलना में इस बार गोपनीयता भी बड़ी है और डाटा एक बार एंटर करने के बाद में पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। अगर ऑफलाइन होता है तो कागज फटने, गुम होने या और भी कुछ खराब होने के विचार से ज्यादा रहते हैं, लेकिन इस बार डिजिटल होने से आंकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता वो बहुत बढ़ गई है।
1: क्या व्यक्ति स्वयं उस एप्लीकेशन के माध्यम से जनगणना में अपनी भूमिका दे सकता है, अपनी जानकारी प्रदान कर सकता है, वो स्वयं जनगणना किस तरह से कर सकता है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप?
0: पिछले 1 मई से 15 मई तक हम सब देशवासियों के पास समय था जिसमें हम अपनी जनगणना यानी मकान के बारे में जो हाउस का जो अभी काम है उससे संबंधित जानकारी हम सेंसस ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसका एक लिंक था, उस लिंक के माध्यम से हम अपने नंबर एंटर करके और उसमें OTP डाल करके और अपने स्वयं की गणना कर सकते थे। उसके पश्चात हमको एक ऐसी ID प्राप्त होती थी, वो ऐसी ID हम जैसे ही प्रगणक को प्रदान करते हैं तो प्रगणक उस ID को वेरीफाई कर देते हैं तुरंत।
1: राधेश्याम जी, बातचीत में आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे कार्यकाल में हालांकि अभी तो कुछ ही समय हुआ है आपको ड्यूटी के दौरान जनगणना में कार्य करते हुए, ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कुछ, ऐसी कोई याद जो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार ऐसा भी कुछ हो गया है?
0: ऐसा विशेष कुछ नहीं, जैसे एक कुछ अभी ढाणिया क्षेत्र ही हुई है और कुछ ट्यूबवेल जैसे कृषि क्षेत्र है तो बाढ़ बंदी तार बंदी ऐसी की हुई है, तो एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए कुछ रास्तों की जो मजबूरियां हैं या रास्तों की जो कठिनाइयां हमारे सामने आई वो हमको याद रहेगी। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाया था और वो फेसबुक पर भी डाला था, उससे संबंधित है कि हमको एक घर से दूसरे घर जाने के लिए गली ढूंढने में यानी मार्ग ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
1: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इतने जो है वो मन और लगन के साथ आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक की जो उसका जो बेसिक कार्य होता है वो अपने घर से स्कूल जाकर स्कूल के उस परिसर में रहकर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन जनगणना का जो कार्य है वो आपको इस कड़ी धूप में रहकर भी घर घर ढाणे ढाणे जाकर जानकारी इकट्ठा करना, वाकई जो आपके जो उस बेसिक कार्य से बहुत अलग है और बहुत अलग अनुभव भी है, और उस जिम्मेदारी को आप बिल्कुल परिपूर्ण और सही तरीके से निभा भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आजकल के जो युवा है, आम नागरिक है, उनको आप खासकर जनगणना को लेकर क्या बात बताना चाहेंगे?
0: युवा वर्ग या खास चाहे कोई भी हो, आम व्यक्ति से मेरा यही निवेदन है कि जनगणना अपने इस देश के नीति निर्माण और योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली साबित होने वाली है और इस जनगणना को लेकर के किसी भी प्रकार की मन में भ्रांतियां डाटा की गोपनीयता की या अन्य किसी प्रकार की योजनाओं के संबंध में कुछ भ्रांतियां जो हमारे मन में अभी भी है कहीं ना कहीं, उन सबको दूर करके और इस जिसको कह सकते हैं एक महोत्सव सा ये कार्यक्रम है, इसमें हम सबको अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अनिवार्य रूप से और आवश्यक रूप से भी निर्वहन करनी चाहिए।
1: बहुत खूब राधेश्याम जी, हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि भी जनगणना केवल आंकड़ों का काम नहीं है बल्कि देश के विकास की एक मजबूत नींव है। जो भी जानकारी लेने के लिए शिक्षक आपके घर पे आते हैं, कोई भी जनगणना का कर्मचारी अगर आपके घर जानकारी लेने आता है तो विस्तृत रूप से आप उसे सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए राधेश्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, अभी अभी आपने सुनी राधेश्याम विश्नोई की राहुल से बातचीत, जिसका विषय था जनगणना 2027, हमारी भागीदारी हमारा विषय। तो चलिए सुनते हैं आज का ये अगला आने वाला गीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पश्चिम राजस्थान की जनता को रेलवे की सौगात के संपादित अंश, अब आप सुनेंगे इसकी रेडियो रिपोर्ट जिसका वाचन किया है मेघा गौड़ ने, तकनीकी सहयोग है प्रवीण कुमार और गजेंद्र सिंह द्वारा, जिसकी प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।
6: माननीय केंद्रीय रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न विस्तार कार्यों का शुभारंभ किया। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहले 8 डिब्बों के साथ दौड़ती थी, अब 20 डिब्बों के साथ दौड़ेगी। इस महत्वपूर्ण यात्री सुविधा का आज माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर शुभारंभ किया। माननीय रेल मंत्री जी ने इसी कार्यक्रम में साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाकर सीमांचल के यात्रियों को एक और उपहार दिया। माननीय रेल मंत्री जी ने रेल यात्रियों को सुविधाओं और रेल विस्तार की सौगातों की भी घोषणा इस कार्यक्रम में की।
7: बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज इस मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी सभी विराजमान हैं। मैं सभी को आदर सम्मान सहित प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, खमागणी करता हूं। आज हम जिस काम के लिए यहां पे उपस्थित सभी इकट्ठे हुए हैं, वो है हम सब की बहुत ही मनचाही ट्रेन वंदे भारत, जिसको करीब तीन साल पहले अहमदाबाद वाली, पहले ये जो दिल्ली वाली जो शुरुआत की थी, तब शुरुआत 8 कोच से की थी, और जितना इसके लिए डिमांड आई, लगातार डिमांड आती गई, तो सीधा इसको 8 कोच से आज 20 कोच कर रहे हैं। आज उस सम्मान के लिए, आज उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, जो देश के संस्कृति, देश की विरासत और देश के टूरिज्म को पूरे विश्व भर में जो पहचान बनाने में लगे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री राज्यसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र गहलोत जी, और सभी विधायक बंधु पब्बाराम बिश्नोई जी, देवेंद्र जी जोशी जी, अतुल जी भंसाली जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, अनिल चौधरी जी, यहाँ पर जिले के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पालीवाल जी, श्री घनश्याम ओझा जी, रेलवे के सभी अधिकारी, मीडिया के साथी और सभी भाइयों और बहनों जो आप उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा राम राम, मेरा खमागणी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। इस ऐतिहासिक पल में मैं आपके साथ 3 या 4 विषय रखना चाहूंगा। सबसे पहला विषय है जोधपुर से और पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियों को आरंभ करने के लिए, हमारे प्रवासी सब जगह है, साउथ में है, गुजरात में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, सब जगह हमारे प्रवासी बड़ी संख्या में है, और जहां पर भी जाते हैं वहां पे हमारे प्रवासी राजस्थान के और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बंधु जब मिलते हैं, सबका ये निवेदन रहता है कि गाड़ियां अधिक चलाएं, और गाड़ियां चली भी इस बीच में बहुत सारी। चेन्नई के लिए डेली सर्विस चालू हुई, पुणे के लिए डेली सर्विस चालू हुई, हैदराबाद के लिए डेली सर्विस चालू हुई, बीकानेर से मुंबई की डेली सर्विस चालू हुई, कई नई गाड़ियां चली, वंदे भारत चालू हुई अहमदाबाद के लिए, वंदे भारत चालू हुई जोधपुर से दिल्ली के लिए, कई तरह की सर्विसेज जो राजस्थान के लिए।

चालू हुई और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए चालू हुई, अब और ज्यादा सर्विसेज चला सके हैं और ज्यादा गाड़ियां चला सके, इसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन करता हूँ, शत शत धन्यवाद देता हूँ। वो है जोधपुर में हमारा कोचिंग का टर्मिनल बनाना। जोधपुर में कोचिंग का टर्मिनल बनने से आप देखेंगे आने वाले समय में हर देश के कोने कोने से गाड़ियों की आवाजाही, नई गाड़ियां चालू करना एक अति सुगम काम हो जाएगा। और जो लंबे समय से आज़ादी के बाद से जितनी गाड़ियां नहीं चली उतनी गाड़ियां अब इस कोचिंग टर्मिनल के निर्णय के कारण जोधपुर से चला पाएंगे। साथ ही साथ वंदे भारत का जो स्लीपर है, ये है अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, ये है चेयर कार है, ये बैठ के जाने वाली गाड़ी है। वंदे भारत स्लीपर भी देश में चालू हो गई है। पहली गाड़ी चली कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में गाड़ी चली, बहुत उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, जो BBC कभी भारत के बारे में अच्छी बात बोलने से कतराता है, उस BBC ने भी एक पूरा वंदे भारत स्लीपर में अपने पत्रकार को भेजा और उस पत्रकार का वर्णन अगर आप देखोगे तो आश्चर्य लगता है कि वो पत्रकार कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यूरोप में हूं या भारत में हूं, इस तरह की गाड़ी बनी है। तो उस वंदे भारत स्लीपर का कोचिंग टर्मिनल भी अब कहां बनेगा, कहां बनेगा, कहां बनेगा, जोधपुर में भगत की कोठी में, बहुत बड़ा वंदे भारत का स्लीपर का टर्मिनल भी बन रहा है। तो यानी पश्चिमी राजस्थान से देश भर में कई तरह की गाड़ियां और वंदे भारत स्लीपर की सुविधा भी आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। इसके लिए मेरे साथ सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़े जयकारे के साथ नमस्कार करेंगे। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो साथियों आपका ये जयकारा मोदी जी तक पहुंचा है और जिस तरह से मोदी जी देश के लिए कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं और विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए नई नई सेवाएं चालू कर रहे हैं, एक बार फिर मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज एक और सुविधा चालू हो रही है जो जैसलमेर से अहमदाबाद की गाड़ी, जैसलमेर में जिस तरह से हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे गजन सिंह जी माननीय, जैसलमेर बहुत बड़ा एक विश्व भर में हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है, टूरिज्म का बहुत बड़ा एक केंद्र है। तो दिल्ली से जैसलमेर चालू हुई स्वर्णनगरी एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है, 140% उसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और अब जैसलमेर से अहमदाबाद भी जुड़ेगा। तो जैसलमेर में चाहे दक्षिण से, चाहे उत्तर से, चाहे पश्चिम से, सब जगह से आने वालों की संख्या बढ़ेगी और जैसलमेर में आज एक कोचिंग केयर सेंटर भी चालू हो रहा है। कई चाहे फलोदी हो, रामदेवरा हो, ओसिया हो, सब जगह के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। आज थोड़ी समय के बाद में यहाँ से मैं जालौर जाऊंगा और पाली जाऊंगा, तो जालौर और पाली से जो 50 वर्षों से डिमांड थी आज़ादी के बाद में लगातार जो दशकों तक डिमांड रही कि भाई जालौर और पाली से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, आज वो डिमांड भी पूरी होगी। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के इस भूमि से दिल्ली का सीधा जुड़ाव होगा। अभी मेरे कई साथियों ने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी, पहले भी डिमांड रखी और मेरी स्वयं की भी डिमांड है, भाई जीएम साहब मेरी भी डिमांड है कि जोधपुर से हरिद्वार की गाड़ी एक चालू हो। तो ये लंबे समय से जोधपुर से डिमांड रही है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं आपको, आप देखते ही हो कि मैं बहुत कम कभी आश्वासन या वादे नहीं करता हूं और जो वादे करता हूं वो पूरे होते ही होते हैं। तो मोदी जी की सरकार का ऐसा ही स्वभाव है, जो वादे करते हैं वो पूरे होते ही होते हैं। तो अगले 10 महीने के अंदर अंदर, आज हुआ हमारे मई 2026 का, तो आप करीब करीब समझो अप्रैल या फिर अगले मार्च तक
मार्च से पहले पहले

पहले जोधपुर से हरिद्वार की गाड़ी की व्यवस्था हो। राजस्थान में बहुत सारा काम चल रहा है। मोदी जी ने आने के बाद में बजट को बहुत बढ़ाया रेलवे का। मोदी जी से पहले मात्र 700-800 करोड़ रुपए मिलता था इतने विशाल प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में आज 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान को बजट मिलता है। और जो काम चल रहा है, अभूतपूर्व काम चल रहा है। आजादी के बाद से कभी इतना काम नहीं हुआ जितना काम अभी मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का राजस्थान में हो रहा है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम पढ़ूंगा। आगरा से बांदीकुई डबलिंग का काम चल रहा है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ डबलिंग का काम चल रहा है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग का काम चल रहा है 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा गेज कन्वर्जन, ये पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली जो मीटर गेज की लाइन थी मारवाड़ जंक्शन से मावली की, वर्षों वर्षों से निग्लेक्टेड थी। मारवाड़ जंक्शन से मावली की लाइन आज उसका गेज कन्वर्जन हो रहा है। और जो एक सेंचुरी के कारण बीच में एक पहाड़ का क्षेत्र है उसमें भी टनल बना के सीधा मारवाड़ जंक्शन से मावली को मेवाड़ को जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। और उससे मारवाड़ और मेवाड़ को जो पश्चिमी राजस्थान को सीधा रतलाम उदयपुर मारवाड़ की तरफ से देश भर से जोड़ने का वो रूट बनेगा, वो काम भी चल रहा है। वैसे ही उमरा देबारी सी डबलिंग चल रहा है, लूनी से भिलड़ी का डबलिंग चल रहा है 272 किलोमीटर। तो अपने जोधपुर से मुंबई साइड में अहमदाबाद सूरत की साइड में बहुत बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी ये डबलिंग पूरा होने से। मथुरा से धौलपुर और झांसी की तरफ थर्ड लाइन बन रही है। धौलपुर से सर मथुरा गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन चल रहा है। नीमच से बड़ी सादरी नई लाइन बन रही है 48 किलोमीटर की। पुष्कर और मेड़ता की 51 किलोमीटर की नई लाइन बन रही है। हम सब जानते हैं पुष्कर जी हमारे पूरे भारत की हिंदू संस्कृति में बहुत ही स्पेशल स्थान है पुष्कर जी का। तो मेड़ता से पुष्कर जुड़ने से एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमि के साथ पूरे रेलवे नेटवर्क का जुड़ाव हो जाएगा। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल की नई लाइन बन रही है 277 किलोमीटर। ये हमारे पूर्वी राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ने का प्रकल्प है। फिर रेवाड़ी से खटवास का डबलिंग चल रहा है, बहुत बड़ा इसका राजस्थान को लाभ मिलेगा। रिंगस से सीकर की डबलिंग चल रही है 50 किलोमीटर की। सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग चल रही है 131 किलोमीटर की। शिवपुर कला मध्य प्रदेश में, वहां से कोटा की डबलिंग चल रही है, नई लाइन बन रही है 101 किलोमीटर की। और तरंगा हिल से अंबाजी माता तक एक नई रेलवे लाइन बन रही है जो कि बहुत ही हमारे श्रद्धा के केंद्र को जोड़ेगी, विश्व के हमारे भारत के रेलवे के नक्शे पर लाएगी। और करीब 46 गाड़ियां नई चालू हुई है कोविड के बाद में, जो राजस्थान को देश भर से जोड़ रही है। कई नई गाड़ियां चालू हुई जो कि जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत, जोधपुर से पुणे, जोधपुर से चेन्नई, जैसलमेर से दिल्ली स्वर्ण नगरी, बीकानेर से मुंबई, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी चालू हुई थी मई 2025 में, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, उदयपुर से अहमदाबाद की वंदे भारत, अजमेर से दरभंगा की अमृत भारत। तो साथियों, जो ये काम चल रहा है, ये काम जब पूरा होगा, जैसे जैसे नई रेलवे लाइनें आएंगी, जैसे जैसे डबलिंग होगी, जिस तरह से ट्रैक की कैपेसिटी बढ़ेगी, कोई आप आश्चर्य करोगे, जो वर्षों वर्षों से आजादी के बाद में जितना काम नहीं हुआ उतना काम जब ये कंप्लीट होता है, राजस्थान को 200 नई ट्रेनें मिलेगी। ये काम सारे कंप्लीट होने से राजस्थान को 200 नई ट्रेनें मिलेंगी। ये मोदी जी का राजस्थान के प्रति विश्वास है, सद्भाव है और राजस्थान के एक एक निवासी के प्रति इस तरह की श्रद्धा के साथ, इस तरह के आदर के साथ काम चल रहा है कि राजस्थान को 200 से अधिक नई गाड़ियां मिलेंगी जब ये सारे काम एक एक करके। और जो स्टेशन का काम चल रहा है वो अभूतपूर्व है साथियों। के बाद से जोधपुर का स्टेशन, कभी सिर्फ थोड़ा बहुत काम होता था, आज देखो जो नव निर्माण हो रहा है,
ये राजस्थान का भव्य

0: भव्य स्टेशन बन के तैयार होगा। हमारी इस शौर्य की मिट्टी, इस शौर्य की धरती में एक और नया नग जुड़ेगा, वो जुड़ेगा जोधपुर का रेलवे स्टेशन, और ये है राजस्थान की इस शौर्य भूमि का, नए स्टेशन का। और आप देख ही रहे हैं कितना तेजी से काम चल रहा है, और दोनों ही तरफ काम चल रहा है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार में डबल एंट्री, एक एक उस तरफ भी जोधपुर के स्टेशन में एंट्री होगी और एक मेन एंट्री, ये जोधपुर का रेलवे स्टेशन बन रहा है। इतना तेजी से काम चल रहा है। जैसलमेर के स्टेशन का अगर चित्र देखो, और अभी बन के तैयार भी हो गया है, इतना सुंदर बना है स्वर्ण नगरी में, ये जैसलमेर का स्टेशन है, बन के तैयार हो गया है। मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगा, आप जरूर जैसलमेर पधारे, और जब भी जैसलमेर पधारे जैसलमेर का स्टेशन भी जरूर देखने जाएं। और भविष्य में ऐसी परिस्थिति होने वाली है कि बहुत सारे स्टेशन देश भर में ऐसे बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि भाई साहब आपके टूरिज्म के डिपार्टमेंट में रेलवे के स्टेशन भी टूरिज्म के स्पॉट बनने वाले हैं ऐसे। और पाली, ये पाली का स्टेशन बन रहा है, ये पाली के स्टेशन का पूरा डिजाइन है, काम चालू हो गया है, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ये पाली का स्टेशन, और ये जयपुर का स्टेशन, पिंक सिटी, राजस्थान के कैपिटल, सुंदर बन रहा है। बिल्कुल जो हमारी धरती की विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी स्थापत्य कला है, इस पवित्र मिट्टी की, इस शौर्य भूमि की, वही मिट्टी की सुगंध आज भारत के रेलवे के स्टेशन से भी आ रही। साथियों, मैं अब और ज्यादा समय नहीं लूंगा, कई स्टेशन है जिनका काम होने को आया है, और बहुत सारे गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी बन रहे हैं राजस्थान में, करीब 25 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, और करीब 12 तो बन चुके हैं, और बाकी का तेजी से काम भी चल रहा है। तो चाहे व्यापार से जुड़े हमारे जितने भी उद्यमी हो, चाहे पर्यटन से जुड़े जितने भी साथी हो, और जो जन साधारण हमारे जितनी भी रेलवे की सुविधाएं हो, आप सबके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार हमेशा सेवा की भावना के साथ, कर्तव्य की भावना के साथ, और एक देश के प्रति श्रद्धा और एक आप सबका विश्वास जीतने की भावना के साथ काम करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आज पधारे, आइए अब हम इस वंदे भारत ट्रेन का और जैसलमेर से अहमदाबाद की ट्रेन का और कोचिंग केयर और इन सब की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस अवसर पर माननीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: भारत माता की जय। आज के इस शुभ अवसर पर जब हम सब लोग यहाँ जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के ऊर्जा परक नेतृत्व में जोधपुर को एक और नई सौगात देने के लिए एकत्रित आए, मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ मेरे अभिन्न मित्र, मेरे छोटे भाई और भारत के यशस्वी रेल मंत्री जिन्होंने देश के रेल सेवा को एक नई पहचान दी। भारत को तकनीकी के इस युग में नवीनतम तकनीकियों से सुसज्जित करने में अभूतपूर्व योगदान किया, और भारत और भारत का विषय, भारत का बदलता हुआ स्वरूप, भारत की बदलती हुई छवि, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते हुए भारत की कथा को पूरे विश्व भर में सूचना और प्रसारण मंत्री के नाते पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे भाई श्री अश्विनी वैष्णव जी मंच पर उपस्थित हम सब के प्रिय, हम सब के आदरणीय राज्यसभा के सम्मानित सांसद श्री राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित जोधपुर शहर के सम्मानित विधायक भाई अतुल बंसाली जी, सूरसागर के सम्मानित विधायक हम सब के आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय विधायक श्री अर्जुन लाल जी गर्ग, आदरणीय पापा राम जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित पूर्व मेयर आदरणीय श्री घनश्याम ओझा जी, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब का परिवार के मुखिया जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित रेलवे के NWR के GM DRM साहब जोधपुर, रेलवे के अन्य अधिकारीगण, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, जोधपुर के लोगों की तरफ से, मारवाड़ के लोगों की तरफ से। और मैंने तो लगे कि आजकल आपने हर छठे महीने इन स्टेशन पर हर कार्यक्रम करने की आदत पड़ गई है। अब ऐसा आपने खोटी आदत अश्विनी भाई आपने डाल तो दी है, और अभी तो 3-4 साल और अपने को ये काम करना है, तो अभी मुझे लगता है 3-4 बार और इसी तरह

से यहाँ एक साथ हम सबको आना होगा। आज हम सब लोग यहाँ जब एकत्रित हुए, जब आज का ये अवसर जोधपुर मंडल के लिए नहीं अभी तो हम सब जोधपुर वासियों के लिए, मारवाड़ वासियों के लिए, पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि का दिन है। मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ भारत की रेलवे के आधुनिकीकरण, रेलवे में यात्री सुविधाओं का विस्तार और उसके साथ साथ में देश भर में जिस

परिवहन का साधन या प्रणाली मात्र नहीं है, अपितु ये भारत की जीवन रेखा है, भारत की अर्थव्यवस्था की बदलती हुई तस्वीर के पीछे निहित शक्ति है और उसके साथ साथ में करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं की आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। और ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विचार को, इस विषय को, इस दर्शन को अपने जहन में रख करके पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर देखा है। रेल के लिए कहा जाता था समय पर नहीं चलती, रेल के लिए कहा जाता था सामान्य सुविधाओं का भी जो है वहाँ कमी होती है। और मुझे याद आता है बहुत सारे लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के वापस भारत में आते थे, वो वहाँ के रेल की यात्रा के अनुभव साझा करते थे और दुख व्यक्त करते थे कि काश कभी हमारे यहाँ भी इस तरह की रेल होगी। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अश्विनी जी के प्रयासों से आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया की जिस स्तर की रेल है उसी स्तर की रेल जो अमेरिका में चलती है, जो जापान में चलती है, जो फ्रांस में चलती है, जो स्विट्जरलैंड में चलती है, उसी क्वालिटी की, उसी स्टैंडर्ड की, उसी गति पर चलने वाली रेल जो है हमारे जोधपुर 2023 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जोधपुर को यह वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली थी, तब से लेकर के जब पहली अहमदाबाद की रेल शुरू हुई, दूसरी पिछले वर्ष जब दिल्ली की रेल शुरू हुई, दिल्ली की रेल को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला था, जिस तरह से यात्रियों को कहा, उसको उत्साह के साथ में यात्री उसके साथ में जुड़ रहे थे, ये मैती आवश्यकता थी कि इस रेल सेवा का विस्तार हो, इस रेल के कोचेज की संख्या को बढ़ाया जा सके। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ माननीय अश्विनी वैष्णव जी का कि उन्होंने मारवाड़ का सपूत होने के नाते, जोधपुर का बेटा होने के नाते और मेरा छोटा भाई होने के नाते, इसी के साथ साथ में वंदे भारत सुविधाओं का जिस तरह से विस्तार देश भर में हुआ है, जिस तरह से कम्यूटेशन की गति बढ़ी, जिस तरह से आवागमन के साधनों में इजाफा हुआ है, जिस तरह से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में एक साथ लगभग 1800 स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम चल, किसी भी शहर, बड़े शहर में चले जाइए, जोधपुर में चले जाइए, रामदेवरा में चले जाइए, फलोदी में चले जाइए, जैसलमेर में चले जाइए, पाली में चले जाइए, जालोर में चले जाइए, आबू रोड पर चले जाइए और जयपुर तक की ट्रैक पे हर बड़े रेलवे स्टेशन पर, भारत के रेलवे स्टेशन 2047 के विकसित होते हुए भारत की छाया प्रति बने, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इस विजन को साकार करने का काम आदरणीय अश्विनी जी कर रहे हैं। मित्रों, इसी के साथ साथ में रेल में बैठने वाले यात्रियों को की यात्रा को जो सुरक्षित बनाया जाए, अब अश्विनी जी खुद इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद में भी, अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद में भी इनको रेलवे की साथ में रेलवे के इक्विपमेंट डिजाइनिंग पर काम करने का, पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने का अवसर मिला है और अपने व्यक्तिगत कौशल का उपयोग करके, अपने खुद शुरुआत करके, अपने हुनर का उपयोग देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए करते हुए इन्होंने रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए कवच की सुविधा, एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को बनाया, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिससे रेल का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है, किसी भी ह्यूमन एरर, आदमी की गलती हो चाहे तकनीकी गलती हो, दोनों के होते हुए भी रेल में एक्सीडेंट नहीं हो और देश में यात्रा करने वाले लगभग 2 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके, ऐसा सुरक्षा कवच आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने प्रदान किया। मैं आग्रह करूंगा जोरदार ताली बजा करके उनका इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। रेलवे को मेक इन इंडिया, रेलवे को आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ में जोड़ने का काम जो माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने किया है वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य। मित्रों, आज हमको भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सटेंशन कोचेज को 8 से 20 करना, अभी आदरणीय जीएम साहब ने जो फिल्म दिखाई उसमें दिखा रहे थे कि सामान्यतः 8 से पहले 15-16 करते, आदरणीय रेल मंत्री जी भी अभी कह रहे थे जो प्रथा है, जो व्यवस्था है उसके अनुरूप 8 से पहले 12 करते हैं, 12 से 16 करते हैं, 16 से उसके बाद में 20 करते हैं, लेकिन 8 से 20 तक एक झटके में काम करके, एक झटके में 8 से 20 कोचेज तक विस्तरित करके जोधपुर के इस सपूत ने, जोधपुर की इस मांग को, मारवाड़ की इस सपने को साकार किया है, मैं इसके लिए भी अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, इसके साथ साथ में जोधपुर में आज भगत की कोठी का जो हमारा टर्मिनस बन रहा है, उस टर्मिनस के लिए भी आदरणीय अश्विनी जी हम सब के सामने चर्चा करने वाले। कई लंबे समय से मांग थी कि जोधपुर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, नई ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए, नई कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। चुनाव के लिए जब कभी भी हम जाते थे, आदरणीय अश्विनी जी जाते थे, हम लोग जब कभी भी दक्षिण भारत के शहरों में, या बेंगलुरु होगा, हैदराबाद होगा, चेन्नई होगा, पुणे होगा, हम जब कभी भी जाते थे, प्रवासी राजस्थानी एक ही बात करते थे, भाई साहब हमको अपने घर के साथ में जोड़ने की सुविधा दे दीजिए। मैं अभिनंदन करता हूँ मेरे मित्र अश्विनी जी का, जब जब मांगा, जो जो मांगा।

0: जितना भी मांगा उससे सवाया देने का काम आदरणीय अश्विनी जी ने किया। और अब जब ये टर्मिनस जोधपुर में बन जाएगा, अभी विस्तार से अश्विनी जी इसके बारे में हम सबके सामने चर्चा करेंगे, मैं ये कहूंगा कि ये केवल टर्मिनस नहीं बनेगा, ये जोधपुर के रेलवे के दृष्टिकोण से जोधपुर में एक नए युग की शुरुआत उसके द्वारा होने वाली। जब कोचिंग टर्मिनस यहाँ होगा, टर्मिनल यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ ज्यादा ट्रेनों का रखरखाव किया जा सकेगा। पहले अंग्रेज के जमाने जब रेल बनी थी तब हमारे यहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री हुआ करती थी, लोको शेड होता था, रेलवे कोच का जो है मेंटेनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी। अब नए सिरे से जब रेल को, रेल भारत की, रेल की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, नए सिरे से गढ़ी जा रही है, न्यू जनरेशन रेल्स जब प्रारंभ हो रही है, तब इस वंदे भारत की एक्सप्रेस की ट्रेनों का रखरखाव का केंद्र भी जो है, देश में चुनिंदा केंद्र है उनमें से भी एक केंद्र हमारे जोधपुर में शुरू हुआ है, उसके लिए मैं बधाई देते हुए अश्विनी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं जोधपुर के साथ साथ में, क्योंकि पोखरण जैसलमेर का भी प्रतिनिधि, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का। पिछले टूरिस्ट सीजन से पहले मैंने अश्विनी जी से एक दिन पार्लियामेंट में बैठे बैठे निवेदन किया था। मैंने कहा, अश्विनी भाई, जैसलमेर इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, हवाई जहाज वैसे भी साल में लगभग आधे समय में चलती है, अरुण जी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, ये भी बाड़मेर के दर्द को, बालोतरा के दर्द को समझते हैं, अगर टूरिस्ट के साथ आवागमन का साधन न होगा मैं टूरिज्म को वहाँ कैसे ठीक कर पाऊँ। तो इन्होंने कहा, भाई साहब कोचेज बन रहे हैं, बहुत दबाव है। मैंने कहा, अगर कोचेज इस सीजन में ट्रेन चालू होती है तो इस सीजन में जैसलमेर की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, ट्रेन बनी कहीं और के लिए थी और चली दिल्ली से जैसलमेर के बीच, एक महीने के भीतर भीतर नई ट्रेन का शेड्यूल जारी हो गया। और खुद रेल मंत्री जी ने आकर के, मैंने आग्रह किया कि अश्विनी भाई खुद को आना पड़ेगा, अपना समय निकाल करके खुद आकर के रेल को चालू किया। और जब मंच पर खड़े थे तब मैंने कहा कि इतनी सुंदर रेल बनाई है, जैसलमेर का नाम स्वर्ण नगरी है, इस ट्रेन का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस हो जाएगा तो स्वर्ण नगरी को एक नया मान और सम्मान मिलेगा। इन्होंने, अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने वही मंच पर खड़े होकर के घोषणा की, न केवल घोषणा की अपितु कहा कि जब मैं मंच से नीचे उतरूंगा उससे पहले इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। आज जैसलमेर को एक नई रेल की सौगात मिल रही, साबरमती के साथ में, अहमदाबाद के साथ में जैसलमेर के जुड़ाव अब बिना किसी व्यवधान के प्रत्यक्ष जुड़ाव हो जाएगा। साबरमती एक्सप्रेस जो है वो अब जैसलमेर तक चलेगी, इससे जैसलमेर के, पोखरण के और इस क्षेत्र के रहने वाले सारे लोग, मेरे लोहावट के क्षेत्र तक के सब लोगों को निश्चित रूप से अहमदाबाद तक के आवागमन और वहां रहने वाले हजारों हजारों की संख्या में प्रवासी जो वहां रहते हैं, अहमदाबाद में, सूरत में, वडोदरा में, नडियाद में, जो राजस्थान के प्रवासी और विशेष रूप से जैसलमेर और जोधपुर के जो लोग रहते हैं उनको एक नई सुविधा इसके माध्यम से आज मिलने वाली। मित्रों, जैसलमेर की पर्यटन के क्षेत्र में एक अनूठी विश्व भर में पहचान, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये कहते हुए कि जब जैसलमेर में ट्रेन शुरू, मैंने पहले प्रयास किए जब दिल्ली ट्रेन की भी बात कर रहा था तब अश्विनी जी कहते थे कि जब तक यहाँ पे मेंटेनेंस का स्टेशन नहीं बनेगा, टर्मिनल नहीं बनेगा, तब तक हम ट्रेन चालू कर नहीं पाएंगे, तो मुझे इसका स्थायी समाधान करना पड़े। और उन्होंने स्थायी समाधान किया, वहाँ मेंटेनेंस टर्मिनल बना दिया, एक ट्रेन पहले चालू हुई, एक ट्रेन अब एक्सटेंड हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसलमेर आने वाला पर्यटक जो है वो प्रिफर करेगा कि जैसलमेर के रेल में बैठ करके आए, देश के हर क्षेत्र से जैसलमेर का रेलवे स्टेशन जुड़ेगा। पोखरण में प्रतिनिधियों बहुत वर्षों से मांग थी, जब ब्रॉडगेज बनी थी तो पोखरण के स्टेशन अबेंडन कर दिया, पिछली सरकारों के समय आंदोलन हुए, उन्होंने एक फौरी तौर पर व्यवस्था की, रेल जैसलमेर के ट्रैक को छोड़ करके पोखरण आती थी, फिर इंजन कट करके जाता था, फिर आकर के पीछे लगता था, फिर जाकर के वो ट्रेन उल्टी चलती थी, फिर गोमट स्टेशन पे जाकर के फिर इंजन उल्टा होता था, फिर घूम फिर करके वापस आके लगता, फिर जैसलमेर की तरफ जाती थी, आते और जाते वक्त 45 मिनट खर्च होते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था, रेल वालों ने उसको बंद कर दिया, जैसलमेर पोखरण का स्टेशन बंद हो गया। मैंने अश्विनी जी को कहा, अश्विनी भाई ये पोखरण परमाणु की नगरी है, ये पोखरण वो धरती है जिस धरती ने इस भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत को सुरक्षा का कवच देने के लिए आणविक धमाके को अपने गर्भ में सहन किया, उस धरती के प्रति हमारा कर्ज है। देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री जिसका जीवन का एक एक क्षण, ऊर्जा का एक एक कण और रक्त का एक एक बिंदु इस देश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए समर्पित है, उसके स्वाभिमान को, उसके अभिमान को, उसके विश्वास को हम डिगने नहीं देंगे, ये संकल्प हमको सबको यहाँ से करके जाना है। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन।
1: आकाशवाणी जोधपुर ने जो दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस पर उपस्थित विद्यार्थियों से बात कर उनके विचार जानने चाहे।
2: मैं सूर्यांशी शेखावत, 11th क्लास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल मंदिर की छात्रा हूँ। मुझे आज वंदे भारत में बैठकर बहुत खुशी व गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने भारत को तकनीकी उन्नति देखने का

0: अनुभव कर रही हूँ। यहाँ पर आरामदायक सीटें, आनंददायक सफर और आधुनिक सुविधाएं भी देख रही हूँ। हमें बहुत अच्छा व खुशी महसूस हो रही है और हम अश्विन जी वैष्णव को धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सुविधाएं व हमारे लिए इतना विकास, भारत के लिए इतना सब कुछ करने के लिए।
1: मेरा नाम अर्षिता दादी चे है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर लाल मैदान जोधपुर से पढ़ती हूँ और आज हम वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जो कि बहुत मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है। मैं जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी है। मैं वंदे भारत ट्रेन की कुछ विशेषता बताना चाहूंगी। यहाँ पे आरामदायक सीटें हैं, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, एसी भी है और ना सीटों के नीचे चार्जिंग सॉकेट भी लगे हुए हैं और मतलब व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, जो कि लोगों के लिए सुरक्षित और सुखद भरी यात्रा देता है।
2: राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल मैदान से मैं विराज हूँ और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मुझे यहाँ वंदे भारत ट्रेन में बैठ के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं हैं, यहाँ पर एयर कंडीशनर है, कंफर्टेबल सीट्स है और है ना, मैं ना नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमें यहाँ पर बैठा के, हमें अच्छे से कंफर्टेबल सीट्स दे के, एयर कंडीशनर में बैठा के, और मैं बहुत ज्यादा गर्व फील कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। धन्यवाद। सक्षत भारत, समर्थ भारत, वंदे मातरम।
3: इस प्रकार माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव व माननीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गरिमामयी उपस्थिति में जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम के द्वारा रेल यात्रियों को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सौगातें दी गई।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुनी रेडियो रिपोर्ट, जिसका वाचन किया था मेघा गौड़ ने, तकनीकी सहयोग था प्रवीण कुमार और गजेंद्र सिंह का, प्रस्तुति थी राजेश लामरोड़ की। आज के प्रोग्राम युववाणी में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथी
5: और दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त आयुषी। तो दोस्तों, आज बहुत सारी आपने जानकारियां तो प्राप्त की, उम्मीद करते हैं ये आपके काम भी आए, लेकिन अब दीजिए हमें इजाजत, अब हमें लेनी होगी आपसे इजाजत जाने की, है ना विनीता?
4: बिल्कुल, आज के प्रोग्राम की संयोजन और परिकल्पना थी राजेश लामरोड़ की। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया

0: कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
2: भारत और साइप्रस के बीच ये strategic partnership दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोदोलोदिस said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening.

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आपको बताते हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं की ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे से। आप अपनी पसंद मन चाहे गीत 531@gmail.com पर भेज सकते हैं। manchaheGEET531@gmail.com। चौपाल सजेगी आज शाम 7 बजे व कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज का समय रहेगा शाम 7:30। श्रोताओं आज की प्रसारण सभा में फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:30। सुगम संगीत सुनिए आज रात्रि 9:15 से।

श्रोताओं, ये था आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब नजर डालते हैं कल की प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों के विवरण पर। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका, यह कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10 से आप सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। जानकारियों का डेली डोज यानी कि मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार सुनिएगा कल प्रातः 8:30 पर। श्री रामचरितमानस का एपिसोड संख्या 4 आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिए कल सुबह 6:15 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7 से। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत कल दिन में 1:05 पर। वहीं कार्यक्रम नारी वाटिका सुनना ना भूलें कल दिन में 1:15 से। युवा साथियों को समर्पित कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा कल शाम 5। हमेशा ही की तरह चौपाल सजेगी शाम 7 और कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज का समय रहेगा 7:30। श्रोताओं, ये था कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण समय। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 यानी 531 kHz पर इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशगान।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार रिले किए जाएंगे और उसके बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और

0: परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। जयपुर में होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। वहीं अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल कर अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियनों और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब ये सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। नगरीय विकास मंत्री झाबरमल खल्ला ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक वक्तव्य में श्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3 सीट सहित 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से चुने गए राज्यसभा के 3 सदस्य नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन 8 जून तक भरे जाएंगे। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 तारीख को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की मंत्री बैठक चल रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब से कुछ देर बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। करीब 3 महीने बाद हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक को कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल की आधारभूत संरचना का काम तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्टेशनों को नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। श्री वैष्णव आज जालौर में भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं, 4,000

0: 600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनेड़ी की डबलिंग, आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
1: श्री वैष्णव ने भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। श्री वैष्णव अब से कुछ देर बाद पाली पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इससे पहले रेल मंत्री ने आज सुबह जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ संचालित हो रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समृद्ध जैव विविधता को सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ, सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
1: जैव विविधता दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, साथ ही उन्हें जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पौधे रोपे गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। पाली में भी पर्यावरण संरक्षण शपथ, पौधरोपण और जल संरक्षण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। देश भर में 1 अप्रैल से लागू हुए आयकर कानून को लेकर शुरू किए गए देशव्यापी जनजागरूकता अभियान प्रारंभ के तहत आज जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विभाग की ओर से लाए गए विभिन्न टूल्स के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि नया आयकर अधिनियम छोटा और सुगम है, जिसमें पुरानी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
3: ये नया अधिनियम जो है ये पुरानी की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैटबॉक्स और एफएक्यू हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं एफएक्यू को, और चैटबॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
1: राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीग में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही स्कूलों में जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। डीग जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह वैक्सीन बालिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक है।
4: जो एचपीवी वैक्सीन है बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग, वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
1: प्रधान

0: मुख्यमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और साहित्य तथा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रेरणादायक कामों के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले की चिट्ठी में हम आपको बताएंगे विकास कार्यों, एचपीवी टीकाकरण, नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में। साथ ही होगी बात ग्राम कृषि महोत्सव और हीटवेव के दौर की, किंतु चिट्ठी की शुरुआत ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा के साथ। जिले में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। अधिक मास की शुरुआत के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन और विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई हैं। डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि परिक्रमार्थियों के लिए प्रमुख पड़ाव स्थलों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कई सरकारी विद्यालयों को अस्थायी आश्रय स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिले को करीब 24 करोड़ रूपये की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। जल संसाधन मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पिछले दिनों परमदरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ रहे। किसानों की सुविधा के लिए ककड़ा चैनल के जीर्णोद्वार और गुड़गांव कैनाल सिंचाई परियोजना के तहत टेल डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी माइनर्स के पुनरुद्वार कार्यों को पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया गया। इसके अलावा डीग डिस्ट्रीब्यूटरी की दीदावली, परमदरा और डीग सब माइनर के जीर्णोद्वार कार्य का भी शिलान्यास किया गया। डीग जिले को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जोड़ दिया गया है। इससे इन नदियों का पानी आने वाले समय में मिलेगा। गृह राज्य मंत्री श्री बेढम ने बताया कि पेयजल संकट के समाधान के लिए हर घर नल योजना के तहत अगले 2-3 महीनों में लगभग 40% काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में डीग जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को 13,855 बालिकाओं के वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से 10,000 से अधिक बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है। 72% से अधिक टीकाकरण कवरेज के साथ डीग प्रदेश में पहले स्थान पर है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के तहत जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया सहित अन्य जांचें भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय सिंघल ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिले में साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति रोकथाम के लिए विशेष कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत हर महीने के पहले शनिवार को विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरे शनिवार को नशे की लत से बचाव के लिए नशे से

होने वाले गंभीर नुकसानों के प्रति सचेत किया जाएगा। तीसरे शनिवार को साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में सतर्क किया जाएगा। पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से इन दिनों महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रही हैं। पिछले दिनों कुम्हेर के कृषि

0: पिछले दिनों कुम्हेर के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम कृषि महोत्सव रखा गया। इसमें जिलेभर से महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों प्रचंड गर्मी और हीटवेव का असर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के मरीजों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपेला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत अर करड़ीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाई कोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलों जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेज विकास भयो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल देश माए 47 ठोड़ा राख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपेला। श्री मोदी रो ई मौके मौजूद लोगों ने संबोधित करण रो ये कार्यक्रम है। नुआ चुनीचिया कर्मचारी रेल गृह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और विभाग माए कामकाज संभालेला। जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल फैला। अजमेर माए फेवन वाला कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल फैला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करड़ीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली माए आज सीमा सुरक्षा बल BSF रा अलंकरण समारोह माए आ जानकारी दीनी। वे कहो कि ई परियोजना माए ड्रोन, रडार, कैमरा और दूजा तकनीकी साधन शामिल फैला। गृहमंत्री कहो कि स्मार्ट बॉर्डर री सोच रातेत BSF री सुरक्षा प्रणाली माए प्रौद्योगिकी न शामिल कर आवता एक साल माए नी भेजो जा सकबा वालो सीमा सुरक्षा ढांचो विकसित करण सारू काम चाल रियो है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
1: गृह मंत्री कहो कि BSF साल 1965 में 25 बटालियन और सीमित साधना सागे काम शुरू कीनो हो। शाह कहो कि BSF अब 2,70,000 कर्मचारियों री मोटी तादाद सागे सरहद री हिफाजत करण वालो दुनिया रो सब मोटो बल बन गयो है। राजस्थान हाई कोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना है। अदालत ए चुनाव ई साल दिसंबर महीना ताई टाल देवन रे सरकार री अर्जी खारिज कर दीनी। हाई कोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा री सदारत वाली खंडपीठ चुनाव प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 20 जून ताई रपट पेश करण रा हुकम दीना। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा अदालत रा फैसला माथे कहो कि सरकार चुनाव करावण सारू तैयार है। दूजी कानी विधानसभा माए विपक्षा नेता टीकाराम जूली हाई कोर्ट

0: ट्रा फैसला रो स्वागत कीनो व राज्य सरकार माथे सोच समझ हर चुनाव टाळबारी कोशिश रो आरोप मांड्यो। चुनाव आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा कार्यक्रम रो ऐलान कर दिनो है। कार्यक्रम रे मुजब चुनाव री अधिसूचना 1 जून 2026 न जारी करी जावेला। पर्चा 8 जून ताई भरिया जा सकेला और 11 जून ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। 18 जून न वोट पड़ेला और वाई दिन सिंजा रिपोर्ट वोटा ने गिनती करी जावेला। वो चुनाव प्रदेश री 3 सीटा समेत 10 राज्यां री 24 सीटा सारू करायो जावेला। आ 24 सदस्यां रो कार्यकाल जून जुलाई 2026 माय पूरो भै जावेला। राजस्थान नु चुनी जिया 3 सदस्यां नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह रो कार्यकाल 21 जून 2026 न पूरो भै रियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री सदारत में आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी ची। अब थोड़ी देर पछे राज्य मंत्रिमंडल रा सदस्य मीटिंग में करी जा फैसला री जानकारी देवेला। करीब 3 महीना पछे भी मंत्रिमंडल री आ मीटिंग खास मानी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि लाडला 12 साल में राजस्थान में रेलाओं जुड़ियो बुनियादी ढांचो तेज एवं विकसित करी चियो है। श्री वैष्णव आज जालौर में भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा री शुरुआत रे मौके राखी जिया जलसा में बोल रहा है। वह कहो कि पहली राजस्थान में रेलां रा विकास सरु हर साल 500-600 करोड़ रूपया मिलता है, जबकि अब हर साल 10,000 करोड़ रूपया खर्च कराया जा रहा है।
1: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए है और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग, आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव भुज बरेली एक्सप्रेस गाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना कीनी। आ गाड़ी भीलड़ी, जालौर, लूणी और जयपुर वैती दिल्ली पुगेला। इनु जालौर री जनता ने पहली दफा दिल्ली ताई सीधा संपर्क रो सुबितो मिल सकेला। श्री वैष्णव रो अबू थोड़ी देर पछे पाली माए रेलवे स्टेशन माथे कराया जा रहा विकास रा कामा रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनु पहली रेल मंत्री आज समारह जोधपुर स्टेशन नु 20 डिब्बा वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली कैंट स्टेशन सारू रवाना कीनी। पहली ई गाड़ी माए 8 डिब्बा हा। रेल मंत्री जैसलमेर स्टेशन माथे नुआ बनाई जिया कोच केयर कॉम्प्लेक्स रोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत उद्घाटन कीनो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जनताओं सगला प्राणियां सारू भेड़ो भविष्य बनावण माए मदद करण री अरज कीनी है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके मध्य प्रदेश रा भोपाल माए राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। यादव कहो कि कुदरत रा प्रति इंसान रा मन माए कृतज्ञता रो भाव वेवणु चाहिए।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो यह हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
0: जैव विविधता दिवस रे मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा री ओर एक कॉलेज में विद्यार्थियां सारू सवाल जवाब री होड़ राखी जी और जैव विविधता ने बचावन रा महत्व रे बारा माए जानकारी दी री जी। हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी री सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम राखी जियो। ये मौके पौधा रोपी जिया और परिंदा सरू परिंडा बांधी जिया। पाली माए पर्यावरण ने बचावन री सौगन लेवन, पौधा रोपण और पानी बचावन जुड़िया कई कार्यक्रम राखी जिया। 1 अप्रैल 2026 लागू करी जिया नुआ आयकर कानून।

0: दोबारा माय जाग जगावन सारू चलाई जे अभियान प्रारंभ रातेत आज जयपुर माय खास कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम माय इनकम टैक्स महकमा रा आला अहलकार न्यारा न्यारा हित धारका सागे बातचीत कर नुआ कानून रे बारा माय विगतवार जानकारी दीनी। कार्यक्रम माय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वकील और उद्योग जगत रा नुमाइंदा शिरकत कीनी और सुझाव दीना। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था राज्य रा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार बतायो कि 1 अप्रैल नु लागू करी जियो नुओ इनकम टैक्स कानून नानो और आसान है।
1: ये नया अधिनियम जो है ये पुराने की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैट बॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैट बॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
0: टाबरिया ने बच्चा दानी रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू HPV टीका लगावन रा अभियान रा तेत डीग माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री टीमा गांवा माए जार इंबाबत जाग जगा रही है। जिलारी स्कूला माए टाबरिया रे HPV टीका लगाया जा रहा है। डीग रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह बतायो के ओ टीको टाबरिया सारू सुरक्षा कवच रो काम करे है।
2: जो HPV वैक्सीन है बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
0: आखिर माय खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 19वां रोजगार मेला माय वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए 51,000 रूबत्ता नौजवाना ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपेला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाई कोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई तक करावन रा हुकम दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लारला 12 साल माय राजस्थान माय रेलाऊ जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेजी विकास फियो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माय न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल।
4: गांव ग्वाड़ अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारों फरमाइशी कार्यक्रम झुमको। झुमको कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: बेरावास तहसील खींवसर नागौर सु ओ ईमेल आयो है भुट्टाराम मेघवाल सुनील मुकेश भूराराम शोभाराम लादूराम मंजू मोनिका सुरता पूजा और शारदा मेघवाल रो
1: ओ कागज माने कने आयो है गांव तापू तहसील ओसिया सु लिखियो है संतोका राम मेघवंशी पटकू धीरू अशोक भाटी कुसुम भाटी आरती एलची बिदकी भाटी लाखाराम भाटी दिलीप पार्वती दिव्या और आना सगड़ा घराड़ा
0: गांव खींदा सरसू ईमेल भेजियो है कानाराम चौहान सुखाराम श्याम सुंदर और तपस्या खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका
2: गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्या सीता देवी मौर्या विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्या खींवसर नागौर सु कल्याणमल प्रभु राम वंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्या और आना सगला साथी
0: और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सु लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी
3: ओ ईमेल आयो है गांव दूंदाड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना घराड़ा बुढ़ा मलानी सु ओ ईमेल आयो है सुरजा राम बारासन और आना साथियों
0: बैनी पट्टी मधुबनी बिहार सु कल्पना वाल्मीकि और मैथिली वाल्मीकि गांव मेलाना सु छेला राम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी मेघवाल तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना
3: पांडव नगर दोरी मीना सु ईमेल भेजियो है देराम राम गोदारा
1: आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव नारवा इंद्रो का सुन नरपतलाल सोनी शिवम और वैशाली खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाली जिज्ञा देवी श्रीमाली सीमा खुशी विशाल मन्नत सुनील किशोर ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगलो परिवार गांव केलवाद सोजत सु ओ कागज लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल कागज आयो है धोबी घाट इंदिरा कॉलोनी जोधपुर सु लिखन आला है नंद किशोर बारिया नंदू धनवंती काड़ू सुमन चांदनी और आनो सगलो परिवार भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी गांव चाडी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगलो परिवार और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी मां मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरेठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आना घना सारा साथी राजू राम सेन पद्मा सेन प्रतिज्ञा सेन और रामनिवास सेन माने कागज लिखियो है खारा बेरा भीमावता लुणी गांव अरनियाली तहसील धोरी मीना बाड़मेर सु फरसा राम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण शारदा खत्री भाग्यश्री हार्दिक खत्री सूरज देवी और सगलो परिवार ओ ईमेल भेजियो है भोपालगढ़ सु धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा और पूजा परिहार भोमेश परिहार माने ईमेल भेजियो है डूंगरपुरा शेरगढ़ सु गांव रामपुरा भाटियान सु माने ईमेल भेजियो है राम सिंह देवासी और थाना राम देवासी
1: खोकरा मारवाड़ सु लिखन वाला है सोहनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला गरवाड़ा और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना

साथियां ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अब कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दी रहो नमस्कार।

श्रोताओं, आज शुक्रवार है। आज रात को 10 से 11 बजे तक आप सुनेंगे आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप अपनी फरमाइश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manchahegeet531@gmail.com, manchahegeet531@gmail.com।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: तोड़ दो फटक
1: नवल भाई तो मामे कट गाड़ के मैं फाटक तोड़ दू।
0: अरे तोड़ दो भाई तोड़ दो वो कोटियो गाजड़ो और डाली है मैं आवरी कौन है थोड़ी नहरी आवरी में ठा पड़ जा मने
1: मैं हूँ नौलबा सीला।
0: ओ ठीक ठीक ठीक आवरी भाई कमरी में आवरी
1: लादे नौलबा मामी तो गाड़ी
0: जाए बात मैं की कौन है जरा मैं दे
1: नौलबाई
0: थे कहूँ है थारे है मोटियाज बनो और मोटियाज बने में कहीं है मिंदक में जोश है
1: खून गर्म हो वे
0: खून गर्म वह नहीं जो थारो को नहीं खून दौड़ा है जद है जो क्या नहीं क्या थे नहीं तो आप रे हमारे है राम कटी की वह यूं कोई फाटका बची जाए।
1: अरे नौलबा बारू एलो तो मानो पड़े।

0: एलो मारे तो कुणी को आजी घंटियां लागोड़ी वे हेर में
1: तो थे घंटी लगाओ कल
0: एड़ा एड़ा कुत्ता राखे जिको के हामी आवे जिको थे तो खुद नावता बुंडा लागो
1: अरे नौलबापत गाया भया रहा का बढ़िया
0: हाँ भाई है जदी तो बात आ है मारे
1: नौलबा घंटी लगा दो खटके दो
0: हाँ लगा दे आगे लगे जी को दो तीन है जी थोड़ा अंदा चो कहूँ हो वो घंटी वो खटको लागड़ो नी जो को हांडियो आयो जो को टकी है जी उन्हें टकी जसी जी को दो तीन भेंटी ठोकी जी तोड़ दी
1: बस
0: एक दो बार थाल जेड़ा कोई आया मैं तोड़ दी मैं
1: कहूँ मैं मारू की कर घंटी तोड़ सके
0: अरे तोड़ जा कई क्या जी मैंने तारा तोड़ लिया बात करे बोल दिया तावड़ो पड़े अनु तो मार दो मगज काम करे कोनी
1: हमें
0: छिया होगी हमें नहीं बजियो हुई तो कई वे पड़ा हाल बढ़ती कोई कम थोड़ी हुई
1: हाँ
0: लू रहा लपर का भाई एकदम कहो ठंडी कह रही बोम हवा उती उती हुई हाँ यूं तो कौन पे देखे अदरात में जान थोड़ी कहो कह फूकर आवे पर बात है भाई कुदरत मामला मैं तो देखू विचार करूं कह ना पंख पंखे रू किकर दिन काटे रिंद रोई ना जिनवरिया किकर काटे सही बात है तो होश विचार कर अरे राका तो घर में राखो कोई बारे थोड़ी मेलो
1: क्यों नौलबा थोड़ी मत भेड़ मत गालू मैं रोज पानी
0: हालत की खोज भाई फाचा कदी बे बीट कर दे चिड़ी है धोबो एक कह नी कबूतरियो है
1: हाँ।
0: कोई कह नी अपर कन घणो की मांगे कोनी
1: हाँ।
0: पर जीव जीव रे हिसाब कुदरती कह नी का रचना है तो इन कारण कही है का ओ संसार थोड़ो हकरो लागे पागलो नहीं बोलतो वे तो है जो कोई बात थोड़ी जैसे
1: सही बात है
0: कबूतर बोले चिड़िया बोले कोयल बोले मिट्टू बोले और क्या तो कहूँ भाई देखे रोज रही तो क्या नहीं अड्डा तो करी है जीव जिन्ना देखा जाते वो तो कई बार विचार करूँ शीला
1: हाँ
0: बनो नाड़ो है कटे की ठा नहीं पड़े भाई देखे
1: प्रकृति बनावे नौलबा
0: यूं कुदरत बनावे नी कुदरत ने क्या है भगवान क्या है मालिक क्या है कई क्या है
1: सही अलग अलग नाव है ना
0: हाँ नाव है पर भाई देखो है जरूर कुदरत रा खेल है और कुदरत रा क्या नहीं क्या भाई की चाह तो बाकर बनी उड़ा नीता है जो क्या नदियां में है कटी मिनक बने या तो कटी कुदरत खुद ही है जो को आप है मार्ग करिया
1: आज नौलबा पर विश्व जैव विविधता दिवस भी है
0: ओ कौन है
1: क्या पर देखो धरती माते एन महासागर में आसमान में जितना भी जीव जिनेवर है पेड़ पौधा है पानी है जीव जंतु है मिट्टी है पठार है समुद्र है नदियाँ है सब है नी मिलन एक है नी
0: कुदरत
1: अलग अलग तरह का जीव है नी जैव विविधता के एक पारिस्थितिक तंत्र है
0: ओ भाई क्या नी के समुद्र में मोटा मोटा है तो भाकरा में दूजा है हमें कटी क्या है क्या भाई देखे क्या साली नारिया है कटी नारिया है कटी शेर है कटी हाथी है कटिंडा है कटी ऊंट है भड़का नहीं हटी ने उतरा दे नारा है दिकना दे नारा है उगुणा नारा है आतुणा नारा है तो पूरा भारत देश में घना जी है
1: सब है नी नौलबा आपस में गुत्थी जन एक ना मोटो जाल बनावे
0: हाँ जाल है आप काम करे
1: हाँ इन जाल में अगर कोई भी जीव जंतु कम हो जावे नौलबा तो बोझी को जाल है टूट जावे
0: हमें भाई कई जाल टूट गया मिन जाल कर कर नहीं तोड़ दिया है
1: तो इन वास्ते ही नौलबा अपन एंड सब चीजें नहीं संरक्षण करनो है हाले हाला पेड़ पौधा लगाना है कोई जीव जानवर है उन्हें मारनो नहीं है उन्हें दानो पानी जीव थे रखो नीमड़े माते जीव बैंड सब बार रखनो है ताकि वे भी आराम जी सके
0: तो हमें देखे की हिमिया छोड़िया नी खिर गोया छोड़िया नी तो बे दादा का चरकी करे बे किने कहो माने नी
1: नदिया में नौलबा जी को प्लास्टिक रो कचरो गाला इन मछलियां वगैरह हुए जी की मर जावे
0: अरे भाई क्या दियो नी मिन आप रे कह स्वार्थ बात है दूजा जीव रे तो क्या नहीं हत्या करण में क्या नहीं आज नहीं क्या नहीं भाई बंद करे
1: हाँ।
0: आग मिची कोनी
1: सब गलत है ना कोनी
0: गलत है तो है तो करियोड़ा का आप ही भुगत तो जो दम तावड़ो पड़े
1: हाँ।
0: जल पर क्या तावड़ो पड़े करो अरे भाई शीला हमारो
1: हाँ।
0: कौ मुकड़े में कह कौ कौन चित्रकार है चित्रकार कौन चित्रा मालो गीतलो है
1: और नौलबा प्रकृति जी की है आप चित्र

0: देता है नी अपन नी पानी हवा ऐसा सब चीजें देवे धान सब
1: ए पंच तत्व से बना पुतला
0: हाँ
1: कह नहीं कहू कह भाई के धरती आकाश जल अग्नि वायु
0: हाँ
1: पंच तत्व है तो पंच तत्व की बात मोटी पंच तत्व कम हो जा तो संसार में गड़बड़ हो जा क्या नहीं के हल्ला हो जा तो गड़बड़
0: हाँ प्राकृतिक आपदा इन उल बहाली आवे पर बाढ़ सूखन तूफान
1: हाँ वो कह नहीं भाई जगह हलो तपन डूब जा तो ही है जो दुख
0: और
1: हलो ही पड़न डूब जा तो ही दुख
0: हलो
1: में पर दुख बात है तो वाकई कौन भाई है कुदरत रा खेल है और कुदरती गीत सुना भाई मैंने
0: सुना उलबा

0: वाह भाई, ये बात सबको गीत तो कह नहीं भाई, देखे धरती आकाश और क्या है बताऊं, सो की है हमें कुण जलमियान कुण भूत होया, इन बाबत की विगत बार मने कोई बात री बताई दो तो मने यहाँ ठा पड़ जा।
1: आज अनि नौलबा अपारे जन्म हो राजा राम मोहन राय जी रो, अपारे बंगाल हुआ और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता हा नौलबा और एक सामाजिक सुधारक हा। नौलबा

0: ही लड़ाई लड़ी, एक तो अंग्रेजों ही लड़ी और अपर देश रा जिका नागरिक हानी जिका ने अंधविश्वास और कुरूतियों जकड़ियो रहा बहने भी इन बारे निकालने वास्ते बहन लोगों ने भी हम जाए
1: दो लड़ाई लड़ना भाई कह नहीं मिनकरी बड़ी हिम्मतरी बात ही और कह भाई आपरे कुरीतिया है कोई कुपरता है बाबत है लड़िया और अंग्रेजों लड़िया तो बड़ा बहादुर आदमी हान और नाम धके राजा राम मोहन लिखी थे ठीक है नी
0: ए नौलवा पर आधुनिक भारत रा नी जनक मानो जावे और ए अपारे बाल विवाह सती प्रथा जातिवाद पर्दा पत्थर एनी खिलाफ लोगों ने नी जागरूक करियो और एने अपारे भारतीय पुनर्जागरण अग्रदूत भी कहे जावे और अपारे जिकी भारतीय भाषाई प्रेस है नी इनो प्रवर्तक भी एने मानो जावे
1: भाई वाह गुणी विद्वान मैंने कहा तो आने कोई नहीं भूल सके पर बाते पर धोगदा कोटि कोटि नमन करा मंदड़े रा फूल चढ़ाऊं बड़े
0: भले नौलबा आज दिन अपारे जन्म हो गामा पहलवान जीरो
1: पहलवान
0: हाँ अपारे अमृतसर पंजाब होता नौलबा और एनी जी का भाटे रा डंबल होता नी बिनो आपरी बॉडी बनी होती और एनी नौलबा पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकियो
1: ओ हो मल्ला उठा उठा में है जी को बूकिया मजबूत कर दिया
0: हाँ एनी वर्ल्ड चैंपियन रो भी नौलबा ने खिताब मिलियो
1: संसार पूरे में कोई हरा ही नहीं सकी दिन है भाई देखे एड़ा पहलवान तो वैन रहे तो कह नहीं भारत देश रो नाम ही ऊंचो हो तो कही है भाई देखे आज ही मिन्न कह बारा कोई क्या क्या बार मत कैमरा फेल जुड़ा जी कोई देख देख नवा पहलवान ही बनी और गम्मा है जो हंगो हटा ठीक है कोई कपड़ नहीं सकता तो वाह भाई ठीक
0: सब मोटा मोटा पहलवान हराई
1: वाह भाई वाह तो कह नहीं दिन दिन है और कोटी कोटी नमन है मंदेरा फूल चलावान पर बातें पोत धोक देवा भले
0: भले नौलबा आचर दिन अपारे जन्म हो मदन लाल मधु जीरो है भी अपारे पंजाब होता है नौलबा एक लेखक अनुवादक और कवि हा एनी अपारे हिंदी और रूसी साहित्य रानी सेतु निर्माता होता
1: ओ दूधड़ी भाषा
0: हाँ
1: रूस वाली बोलता ना पाली ये तू है जो हम जाओता
0: हाँ एनी नौलबा कई रूसी किताब और एनी अपर हिंदी में अनुवाद करियो और एक हिंदी रूसी शब्द कोश बनायो
1: ए भाई अपर भारत देश रा जेका मोटियार है भाई रूसी भाषा ही की
0: हाँ।
1: रूस वाला मोटियार है जो अपने कहो है के भाई हिंदी ही की
0: एने नौल बापा रे पद्मश्री भी सम्मानित करी
1: हाँ तो देखा कि अपन मैत्री बदी है
0: हाँ।
1: तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा और बड़े
0: बड़े नौलबा आज दिन अपारे फोत होया गोविंद चंद्र पांडे जी अपार इलाहाबाद हाँ नौलबा और एक 20वीं सदी रानी जाना माना चिंतक हा लेखक हा इतिहास वेता हा संस्कृत तज्ञ हा नौलबा कई भाषाओं का ज्ञान होता
1: वो तो भाई जो
0: और ए ऋग्वेद यानी घणीहारी जी की कविता है नी
1: मैंने
0: अपर हिंदी में अनुवाद करियो और उन अलावा भी कई ग्रंथ लिखिया एने भी अपारे पद्मश्री मूर्ति देवी पुरस्कार विश्व भारती सम्मान और शंकर सम्मान भी सम्मानित
1: करियो विद्वान ने गुणी मिनका ने कोई नहीं भूल सके पर बाते पौर धोक देवा कोटि कोटि नमन करा मंदड़ेरा फूल चढ़ाऊं बड़े
0: बड़े नौलबा आज दिन अपर फोत होया श्रीपाद अमृत डांगे जी ए अपर बम्बई होता नौलबा और एक भारतीय राजनेता होता ए अपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी स्थापना करी और उन अलावा अपर भारतीय मजदूर आंदोलन होनी उना प्रमुख नेता होता
1: ओ किसान मजदूर वाला लाल झंडे वाला
0: हाँ
1: वाह की कोनी देखे भारत भूमि माते है इनकी तरह झंडा है बे मौको आया बाने राज करनो कह नहीं के कह भाई अवसर मिले
0: हाँ
1: और ए करियो तो यानी कोई नहीं भूल सके हक कुदरी बात है मिनका ने करी तो यानी कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चढ़ाओ भले
0: भले नौलबा आज दिन अपरे फोत होया शेर शाह सूरी जी ए भी अपरे पंजाब रे होशियारपुर शहर होता और ए नौलबा ने 1540 में हुमायूं ने हरा अपरे सूरी साम्राज्य री स्थापना करी
1: ओ शेर शाह सूरी
0: हाँ
1: ठीक ठीक ठीक है जी देखे भाई पुरानी टाइम में कई है भाई देखे के आपस में बादशाह राजा महाराजा हैंगी है जो कह नहीं कि भाई राजवाज थे आबरी खपत करता अरे
0: हाँ।
1: है जो हुमायूं ने रहे हो
0: हाँ।
1: है जो को कह नहीं बादशाह बढ़िया
0: ए नौलबा ने बादशाह बढ़िया फचा पर नई नगरी और सैन्य शासन व्यवस्था स्थापित करी और अपर अपनी हेंगू पहलम पोत रुपयो ए जारी करियो
1: तो। ओ हो रुपयो नी
0: हाँ
1: और चांदी आरो
0: हाँ और ए नौलबा पर भारत जी की डाक व्यवस्था होती नी उन्हें भी सही करियो उनमें सुधार करियो और अपर अफगानिस्तान में काबुल लगान बांग्लादेश रे चटगांव तक यानी ग्रांड ट्रंक रोड बनाई
1: ओ हो हड़क बनाई
0: हाँ
1: इतनी मोटी
0: हाँ।

0: भाई जदत कह नहीं कह तो जुग दृष्टा
1: हाँ
0: राउंड जाऊने कह नहीं हो रही करी
1: करी
0: तो भाई अड़ा कह नहीं बिरदा मिलका नहीं कोई नहीं भूल सके आने अकिल तरह गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करा बड़े
1: बड़े नौलबा आज दिन अपारे फोत होया गोविंद राम सक्सेरिया जी अपारे जयपुर होता नौलबा और एक मोटा व्यवसायी होता एने अपारे भारत रानी कपास किंग कहो जावे।

0: विश्वा एक कवि, लेखक और साहित्यकार है। अपार संस्कृत भाषा में 3 महाकाव्य लिखिया, 20 उपखंड लिखिया और कई नाटक लिखिया।
1: ओहो, निकरा मोटा विद्वान है भाई।
0: हाँ,
1: गुणी विद्वान है। जो इतना कह नहीं कि आप रचना रची।
0: हाँ,
1: तो आज ही लोग बांचे तो बाने याद करी है। अरानी कोटि कोटि नमन है, मंदिरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
0: बड़े नौलबा। आज दिन अपार फोत होया विजय काशीनाथ पाटिल जी।
1: हाँ,
0: एक मशहूर संगीतकार है और ए नौलबा जी का गाना लिखता नहीं तो उनटे में गाना आपने राम लक्ष्मण नाम लिखता। उनमें इन्हें राम एनो जोड़ीदार होता जिका सुरेंद्र जी होता और खुद लक्ष्मण हा।
1: ओ ठीक ठीक, राम लक्ष्मण भाई आने ए आपने कह नहीं कि भाई बाजा बजोन में क्या जोड़ी बना ली।
0: हाँ, तो एने लौंडवा पर राम लक्ष्मण रे नाम ही जानो जावे।
1: हाँ, के कोनी भाई देखे के यापरी रचनावा रची और चौकी रचनावा रची जिद कह नहीं कि आज संगीत में नाम करनो दोरो है।
0: हाँ,
1: ठीक है नी। आई एक साधना है, तपस्या है, अरे बाजा को बाजा नी। ठीक भाई, ठीक था
0: घनी मेहनत लागे।
1: हाँ, घनी लागे भाई, मंठा है के हूँ तो कई कह नी जोड़ीदार हाथ रियोड़ हूँ
0: है नी।
1: हाँ, कह दो दो चार चार घड़ी बैठे को गोडा जुड़ जा।
0: हाँ,
1: जब जान बाजो बाजे।
0: सही बात है।
1: वाह भाई, की कोनी तानी कोटी कोटी नमन है, मंदिरेरा फूल चढ़ावा। तो आरो कोई बाजो बजेड़ो कोई गीत रो वैद होना देखा
0: हुना उन्ना उल्बा।

श्रोताओं, आज शुक्रवार है। आज आप अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं रात्रि 10 से 11 बजे तक। कार्यक्रम रहेगा मन चाहे गीत, और आप अपनी फरमाइश शामिल करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manchahegeet531@gmail.com, manchaegeet531@gmail.com। हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, गुलजार का लिखा ये गीत आपने सुना फिल्म दिल से। संगीत AR रहमान का और इस गीत को गाया सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं रंग फिल्म का ये गीत। गीतकार है समीर और सुरिंदर साथी, संगीत है नदीम श्रवण का और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हकीकत फिल्म से। बोल लिखे हैं नवाब आरजू ने, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का, और इस गीत को गाया है हरिहरन और अलका याग्निक ने।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं दिल का रिश्ता फिल्म से। गीतकार समीर, संगीतकार है नदीम श्रवण और इस गीत को गाया है अलका याग्निक, कुमार सानू, सपना अवस्थी और साथियों ने।

श्रोता हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से ये गीत। गीतकार है मदन पाल, संगीतकार जतिन ललित और इस गीत के बोल लिखे हैं, माफ़ कीजिए, इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म पुलिस और मुजरिम का ये गीत। गीतकार है दिलीप ताहिल, संगीतकार बप्पी लहरी, और इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति ने।

श्रोताओं, पेश है आज की फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश। ये गीत हमने लिया है क्रिमिनल फिल्म से। गीतकार है इंदीवर, संगीतकार MM करीम, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद

0: निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: डिस्कशन फोकस्ड ऑन एनहांसिंग कोऑपरेशन।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार

0: बातचीत की।
1: डिस्कशंस फोकस्ड ऑन एनहांसिंग कोऑपरेशन।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी के सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख

0: आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का सावधि सूची

सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको सुनवाते हैं हरिहरन की गाई ये गज़ल, जिसको लिखा है अहमद फराज ने।

श्रोताओं जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तेवर फिल्म से। बोल लिखे हैं कौशर मुनीर ने, संगीत है साजिद वाजिद का और इस गीत को गाया है शफाकत अमानत अली ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाते हैं आई फिल्म का ये गीत। बोल है इरशाद कामिल के संगीत, AR रहमान का, और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने।

श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे हमने लिया है कट्टी बट्टी फिल्म से। गीतकार है कुमार, संगीतकार है शंकर एहसान लॉय और इस गीत को गाया है ऋषिका शेखर और शंकर महादेवन ने।

कट्टी बट्टी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत।

आकाशवाणी जोधपुर के श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित ये गीत लेकर के हाजिर हूं मैं आपका रेडियो राही कल्याण विश्नोई। श्रोताओं, ईमेल पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप अपनी फरमाइश इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं हमें ईमेल भेजकर। हमारा ईमेल एड्रेस है manchahegeet531@gmail.com। manchahegeet531@gmail.com। श्रोताओं, आपके मेल हमें मिलने शुरू हो गए हैं और पहला मेल हमारे पास में आया है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का। जोधपुर राजस्थान से हमें मेल भेजा है सुरभि, हितेश, ललिता और प्रमोद कुमार खींची ने।

सनावत से हमें मेल भेजा है शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना ने। किशनगंज बिहार से हमें मेल भेजा है रविंद्र मोहन दास और आशा देवी ने। पाली राजस्थान से हमें मेल भेजा है डॉक्टर चंद्रभान और युवराज ने।

श्रोताओं, आपके प्यार भरे मेल हमें लगातार मिल रहे हैं और अगला मेल हमें भेजा है गांव जाखूद से समुदयाल खटक विमला अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक और पूजा खटक ने। जनकपुरी सहारनपुर से हमें मेल भेजा है जॉन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो ने।

नारायणपुर बलिया से हमें मेल भेजा है ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी, और दूधिया नवोदा से हमें मेल भेजा है प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय ने।

जोधपुर राजस्थान से हमें मेल भेजा है अरमान जोधपुरी, चंचल चौधरी, अमिता भंडारी, अनामिका शर्मा, अनुपमा, गीता, गीतिका जैन और कविता बिश्नोई ने। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें

ज़िला मऊ से हमें मेल भेजा है मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम और मोहम्मद सादिक अंसारी ने। वहीं बहादुरगंज गाजीपुर से हमें मेल भेजा है आज़ाद अली, रिजवान और अब्दुल्ला आज़ाद ने। वहीं जोधपुर राजस्थान से हमें मेल भेजा है कुलदीप सिंह भाटी, कुंतल, निधि व्यास, निमिषा व्यास और पूजा ने।

श्रोताओं, अगले मेल हमें भेजा है कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजीव, जाधव, प्रशांत और संचित ने। इनके साथी है प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी और कल्पना देशमुख।

न थाना पंजाब से हमें मेल भेजा है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता ने। मुजफ्फरपुर बिहार से हमें मेल भेजा है आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हमें मेल भेजा है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने। नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मेल भेजा है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। जोधपुर राजस्थान से हमें मेल भेजा है स्वाति पुरोहित, श्वेता जैन, वीणा और सुरभि सारस्वत ने।

चक 5 MD पतरोड़ा से हमें मेल भेजा है मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और सुनील जनागल ने। आइए इन सबकी फरमाइश पर सुनते हैं हीना फिल्म का ये गीत।

ऑक्सीजन पार्क अमरावती से हमें मेल भेजा है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे और प्रणय और प्रतिभा ने।

श्रोताओं, अगला मेल हमें भेजा है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहार कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु खुराना ने।

होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हमें मेल भेजा है जयराम, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल और उनके पूरे परिवार के सदस्यों ने। भंजन उत्तर प्रदेश हमें मेल भेजा है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा ने। वहीं मऊ उत्तर प्रदेश में मेल भेजा है मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। जिला मोतिहारी बिहार से हमें मेल भेजा है नंदन कुमार, अंकित कुमार और जिला बेगूसराय से हमें मेल भेजा है संदीप कुमार और संजय कुमार ने। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से हमें मेल भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप सभी की फरमाइश पर हाजिर है गीत गाता चल फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो राही कल्याण बिश्नोई। आप अपनी फरमाइश मन चाहे गीत 531@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगला मेल हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी और ओम कुमार का। छोटी बलिया फिल्म सिटी से हमें मेल भेजा है अहमद भाई फूलवाले, खुदनी, सदक, आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हमें मेल भेजा है आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार ने।

पन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें मेल भेजा है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। जलालाबाद वेस्ट से हमें मेल भेजा है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। वंडिंगखेड़ा पंजाब से हमें मेल भेजा है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं नूरी फिल्म का ये गीत।

गुवाहाटी असम से हमें मेल भेजा है हिरेन पांड्या, नरेन और वीरेन पांड्या ने। गांव फरांसी हिसार से हमें मेल भेजा है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। आप सबकी फरमाइश पर हाजिर है पाकिजा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगला मेल हमें भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से हमें मेल भेजा है जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजोत कौर ने। टूंकिया तहसील जिला बालोतरा बाड़मेर से हमें मेल भेजा है भूपत कुमार डाबी, कृष्ण कुमार डाबी, मुकेश सोलंकी और गुड़ामालानी से हमें मेल भेजा है खुशहाल पवार ने।

श्रोताओं, अगला मेल हमें मिला है डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर और आरव व अर्पिता का। वाडे खाम गांव से हमें मेल भेजा है अनंता वाडे, रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाडे परिवार ने। गुजरात गांधीग्राम से हमें मेल भेजा है प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी ने।

श्रोताओं, अगला मेल हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। गुमला झारखंड से हमें मेल भेजा है जावेद और शगुफ्ता अंजुम ने। पलेटा टीका।

पलेटा टीकमगढ़ से हिंदुस्तान रेडियो मित्र समूह ने हमें मेल भेजा है, जिसमें शामिल है विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में मेल भेजा है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इशरार और नरगिस खातून ने। आप सबकी फरमाइश पर हाजिर है जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत।

इनके साथ ही संदीप मकड़ भी हमें सुन रहे हैं। रामगढ़ कैंट झारखंड से हमें मेल भेजा है निपि सहानी और सुनीता सहानी ने। पटेल नगर मलौट से हमें मेल भेजा है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने। आप सबकी फरमाइश पर हाजिर है स्वीकार किया मैंने फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आखिरी मेल शामिल करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के। जय जिनेन्द्र। श्रोता संघ पर भणी महाराष्ट्र से हमें मेल भेजा है रूपी संगई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरे संगई परिवार ने। नागपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोताओं ने हमें मेल भेजा है कमल शहानी, पिंकी और डॉक्टर अफजल मलिक ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के ठीक 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है।

आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said, in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद वादन, राग हमीरी बिलावल।